जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

गुड मॉर्निंग, सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर मैं हूँ वास्तु कृष्ण, आपका स्वागत करता हूँ। गलतियां असफलता नहीं, सीखने की फीस होती हैं। डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप गलतियों से डर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे मेरा दोस्त, फंस जाएंगे आप। ये नहीं कर रहा है, गलतियों से डरिए मत। देखिए, गलतियां जब हम करते हैं, अगर हम कहीं नौकरी करते हैं, कोई गलती हो गई, हमारे जो बॉस या मैनेजर्स होते हैं वो धमका देंगे, डांट देंगे, घर में माता पिता यानी जो भी हमसे बड़ा होगा वो हमको डांट सकता है, हमको उसी का डर लगा रहता है। इसी वजह से हम गलतियां नहीं करते, हम कोई नया काम नहीं करना चाहते कि गलती हो जाएगी तो डांट पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, गलतियां सीखने की फीस होती है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? अगर गलतियां नहीं करते तो बल्ब कैसे बनता, नए नए आविष्कार कैसे होते? इसीलिए दोस्तों, गलतियां करने से मत डरिए, आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए और आगे लगातार बढ़ते चले जाइए। दो फायदे होंगे आपको, एक तो आपके भीतर से वो डर निकल जाएगा, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होगा कि आप जहां खड़े हो जाएंगे लोग आपकी तरफ देखेंगे। फिर

जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कमाल की बात कही है दोस्तों। आज के समय में हम सभी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता और आत्मविश्वास बढ़ता है इस बात से।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
6: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। सफल लोग प्रतिभा से नहीं अनुशासन से आगे बढ़ते हैं, ये विचार है जिम रोन के। वो कहते हैं कि रोज की अच्छी आदतें बड़ी सफलता का आधार बनती है। अब जो बहुत ज्यादा कामयाब लोग हैं इस दुनिया में, आप देखेंगे कि इतने भी ज्यादा वो शायद टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उनका जो सबसे अच्छा गुण है, जिस गुण की वजह से वो सब कुछ हासिल कर पाए हैं, वो है कंसिस्टेंसी, लगातार अथक प्रयास करते रहना। कि बहुत ज्यादा हुनरमंद टैलेंटेड लोग बैठे रह जाते हैं अपने अहम या अहंकार की वजह से, और जो लगातार मेहनत करते हैं वो कम हुनरमंद लोग होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मेहनत इतनी ज्यादा करते हैं कि उनके आगे कोई टिक नहीं पाता। तो अगर कभी आपको लगे कि शायद आपके भीतर उतना ज्यादा टैलेंट भी नहीं है, तो आपके हाथ में एक चीज हमेशा होती है, वो है अनुशासन, लगातार अथक प्रयास करना, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करना। क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। आपने हजारों बार ट्राई किया होगा, पर यह आखिरी थोड़ी ना था, एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए, यही सफलता का एक सूत्र है।

गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। हर सुबह ये तय कीजिए कि आज शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करेंगे। क्या लाभ होगा इससे? ऊर्जा सकारात्मक होगी और सही दिशा में लगती चली जाएगी। एक

दिशा में लगती चली जाएगी और आपकी जो एनर्जी है, आपके जो पॉजिटिव विचार है, जब वो एक दिशा में काम करेंगे, उनका एकमात्र एक टारगेट होगा, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हर सुबह उठकर बहुत से लोग नेगेटिव, ये कमी वो कमी, बस उनको कमियां नजर आती हैं। दोस्तों, नजरिया बदलने की जरूरत है। जब बदलेंगे नजरिया तो बाहर नजारे बदल जाएंगे। इसी देश में लोग तरक्की कर रहे हैं, इसी जगह पर, इसी परिस्थिति में लोग आगे बढ़ रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए। खुद से प्यार कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए, नजारों से, कुदरत से प्यार कीजिए, अपने काम से प्यार कीजिए दोस्तों, और आप तरक्की जरूर करेंगे। ये पहला सूत्र है। गुड मॉर्निंग।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio, Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजी वंशी, और लेकर आई हूं आज आपके लिए बहुत ही खास बातें। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है जो मैं आज आपसे साझा करने वाली हूं, वो स्मार्ट एनजीओ के सौजन्य से है और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपकी सेहत से रिलेटेड होती हैं। वहीं आपको हम समय समय पर जानकारी देते हैं कि आप किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, या उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो गर्भावस्था में हैं इस वक्त और किस तरीके से वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं और अपने खाने पीने की ध्यान रख सकती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि परिवार किस तरीके से उस महिला की मदद कर सकता है। देखिए, ये सफर बड़ा ही कठिन होता है, तो ऐसे में परिवार की भागीदारी और उनकी जिम्मेदारी काफी मायने रखती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य का ख्याल रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसी दौरान शरीर में कई तरीके के बदलाव आते हैं, जिसमें से एक आम समस्या होती है खून की कमी, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। और अक्सर इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हम जाने अनजाने ऐसे ही जाने देते हैं, हमें लगता है क्योंकि गर्भावस्था में ऐसा होता ही है, तो ये एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, कई बार सिम्टम्स आम होते हुए भी हमें समझ नहीं आता कि वो किस ओर इशारा कर रही हैं। तो चलिए कुछ इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा कर देती हूँ। देखो, गर्भावस्था के दौरान जो शरीर में खून की कमी आती है वो इसलिए आती है क्योंकि प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक, और जिससे हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए अधिक आयरन की जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और आप मानो कि अगर शरीर को पर्याप्त आयरन ही नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो अपने आप कम होता चला जाता है, और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आम होकर भी आम नहीं होते, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस अवस्था में एक महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, कमजोरी उसे महसूस हो सकती है, उसके चेहरे पर नाखूनों या आंखों के नीचे पीलापन आपको देखने को मिल सकता है, उसका सांस फूल सकता है, या उसको बार बार चक्कर आने की समस्या हो सकती है, सर दर्द उसे हो सकता है और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ सकते हैं। और ये वही सिम्टम्स हैं, ये वही संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर यूं ही समझ कर कि ऐसा तो होता ही है, ये समझ कर हम टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सिम्टम्स को टालना नहीं है, जब भी ये लक्षण आपको दिखाई दे एक बार जरूर अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर एक बार जरूर अपनी जांच कराएं, क्योंकि जांच करा लेंगे तो आपके मन का जो वहम है वो भी निकल आएगा और साथ ही साथ जो आपकी स्वस्थ होने की अपडेट है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। देखो, खून की कमी जो है वो आपके खान पान से होती है। अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, अपनी सही से देखभाल रखेंगी, तो खून की कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बस ध्यान देना है अपने आहार पर, और आपका जो आहार होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन से भरपूर, जिसमें कि आप पालक, मेथी, चुकंदर और बाकी की जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो जरूर खाएं। साथ ही साथ जो फल होते हैं, खास तौर से अनार, खजूर, मुनक्खा और गुड़, ये भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और जो आपकी रसोई घर में दालें मौजूद होती हैं वो तो प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होती हैं, तो रोजाना नहीं तो आप एक दिन छोड़ करके दाल जरूर खाएं। काला चना आप खा सकती हैं, वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और राजमा भी बहुत अच्छा रहता है, आयरन से भरपूर रहता है। वहीं आपको बता दूं कि विटामिन सी भी बड़ा ही जरूरी हो जाता है ऐसे टाइम में, तो आयरन को शरीर में अच्छी तरीके से सोखने के लिए विटामिन सी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए आप नींबू खा सकते हैं, आंवला, संतरा और टमाटर, इसको आप अपने जो खाने की थाली है उसमें जरूर शामिल करें, यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं, जो तासीर जिनका नेचुरली ही खट्टा होता है, आप उसको जरूर खाएं। और आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं उसको आप सही समय पर लें, फॉलिक एसिड सही पर लें और नियमित रूप से उनका सेवन करें। ऐसे ना करें कि आज हमने खा ली, कल को हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लापरवाही होती है और इसके जो परिणाम होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, और बाद में आपको लगता है कि हमने तो दवाइयाँ खाई थी लेकिन आप एक शब्द भूल जाते हैं कि क्या आपने नियमित रूप से वो दवाई खाई भी थी या आपने
छोटी सी लापरवाही बरती थी अपनी सेहत के साथ। तो अपनी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। इसी के साथ एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं और आयरन की गोलियां वो खा रही हैं, उसको आप बिल्कुल भी चाय के साथ ना लें, कॉफी के साथ भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आयरन को आपके शरीर में सोखने से रोक लेते हैं। इसे या तो आप सादे पानी से ले सकते हैं या नींबू पानी के साथ आप इसको लेंगी तो और भी अच्छा हो जाएगा। और किस तरीके से आप गर्भावस्था में अपना देख रेख कर सकती हैं और क्या इसके खास तरीके हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो नियमित जांच करानी है, यानी कि डॉक्टर से समय समय पर आपको जांच करानी है, ANC विजिट करानी है, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच आपको नियमित रूप से करानी है। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जरूरी अल्ट्रासाउंड कराने हैं। अपनी मनमर्जी से कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है। अपनी जो डाइट है वो आपको बैलेंस लेनी है। प्रोटीन के लिए आप दूध, पनीर, दही, दालें, अगर अंडा खाती हैं तो अंडा भी आप खा सकती हैं। कैल्शियम के लिए, क्योंकि आपके बच्चे के विकास के लिए भी आपको कैल्शियम चाहिए होगा, तो वो आपको दूध और डेयरी उत्पाद से ही मिलता है, तो इसलिए वो आप जरूर खाएं। इसी के साथ दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर आपको पीना है। और दोस्तों एक खास बात और हो जाती है, मैं आपको बता दूं कि रात में कम से कम आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी हो जाता है और दिन भर में भी आपको समय निकाल करके 1 से 2 घंटे आराम जरूर करना है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगी उतना ज्यादा आपके जो शरीर है वो अच्छा महसूस करेगा। और सोते समय एक चीज आपको बड़ी ध्यान में रखनी है, बाईं करवट यानी के लेफ्ट साइड होकर के आपको सोना है। इस पोजिशन को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे बच्चे तक रक्त संचार अच्छा रहता है। और ये नहीं करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल रेस्ट मोड पर चले जाएं। लाइट एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, हल्का व्यायाम आपको जरूर करना है। डॉक्टर की सलाह लेकर के आप वॉक यानी के टहल सकती हैं या प्राणायाम भी कर सकती हैं। भारी सामान उठने से आपको बचना है और बहुत ज्यादा जो झुकने वाले काम होते हैं उनसे भी बचना है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आऊंगी। और आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में जो जानकारी आपसे साझा की जा रही है वो स्मार्ट NGO के सौजन्य से आपको कराई जा रही है उपलब्ध। और इस प्रोग्राम का नाम है सेहत सही लाभ कई। अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। देखो अगर गर्भवती महिला के पेट में तेज दर्द या ब्लीडिंग होती है यानी कि खून आना शुरू हो जाता है, इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसे में भी जरूर एक बार अपने डॉक्टर से बात करें। चेहरे या हाथ पैरों पर अचानक से बहुत ज्यादा सूजन आ गई है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी है। और बच्चे की हलचल अगर कम महसूस आपको हो रही है, इस बारे में भी आप जरूर डॉक्टर से बात करें या आप अपने आसपास की आशा या आंगनवाड़ी वाली दीदी से भी बात कर सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं फिर से लौटूंगी ऐसी ही कुछ सेहत भरी बातों के साथ। अभी दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद, बाय बाय। ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: प्रस्तुति। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर, और अब आप सुनेंगे एक खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ, और ये कार्यक्रम है सेहत सही लाभ कई, मध्यम और गंभीर एनीमिया कब और कैसे IVFCM मदद कर सकता है, आज का टॉपिक यही है। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ सेहत सही लाभ कई के इस अगले अंक में। मुझे तो आप जानते हैं, मेरा नाम है वास्तु कृष्णा। पिछले कार्यक्रमों में हमने इसी विषय में बात की है कि गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है, या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और किन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। तो सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी, दोनों का मैं स्वागत करता हूँ
1: जी। धन्यवाद, धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम
0: जी। सेहतिया सिंह जी, बताइए जरा, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, एक बार फिर से सरल भाषा में समझा दीजिए।
1: जरूर बतावेंगे जी। जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहते हैं, और इसके बाद आगे बात करें तो 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो इसे मध्यम एनीमिया कहते हैं, और 7 ग्राम से कम हो तो यह गंभीर एनीमिया माना जावे है।
0: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतनी ही ज्यादा चिंता।
1: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों दोनों पर पड़े है।
0: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: बिल्कुल ना जी, समय पर पहचान और इसका इलाज घना जरूरी है।
0: दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, और ये कहानी हमको हमारी टीकन देवी जी सुनाएंगी।
2: देखो, जो आज मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ना आप सभी को
0: जी,
2: वो असल में सुनीता की है। अब मैं आपको बताऊँ, सुनीता का चल रहा था 7वां महीना।
0: अच्छा जी।
2: कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आवे थे।
0: अच्छा।
2: तो थोड़ी दूर जब भी चलक रही तो उसे सांस फूलने की बीमारी सी हो गई।
0: अच्छा।
2: उसे टेंशन हो गई, घर का काम भी मुश्किल लगने लगा।
0: अच्छा।
2: जने जने कितना काम हो। घर वाले सोचते थे कि ये तो गर्भावस्था में होता ही है, तो ज्यादा कुछ टेंशन की बात ना है। लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच की गई, और रिपोर्ट में पता क्या चला?
0: क्या चला?
2: उसे मध्यम एनीमिया था।
0: ओ माय गॉड। यानी फिर क्या हुआ उसके बाद?
2: फिर क्या, स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझा गया, आगे सलाह भी दी गई उसे, और परिवार को भी समझाया गया कि ये केवल कमजोरी ना है बल्कि उसे इलाज की जरूरत है।
0: सेहतिया सिंह जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाता है तो डॉक्टर को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, या वो देते हैं ध्यान?
1: देखो, ऐसा होगा जी, डॉक्टर पहले स्थिति की गंभीरता को देखेंगे। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं।
0: अच्छा।
1: यू हो जाए,
0: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
1: जी बिल्कुल, IVFCM हर किसी के लिए नहीं है, ये एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद ही लिया जा सके है।
0: ऐसा है ना सेहतिया जी, अब बहुत सारे दोस्त हमारे सुन रहे हैं लेकिन उन सबको नहीं पता कि ये IVFCM होता क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि आसान भाषा में हमारे तमाम मेरठ के श्रोताओं को, हमारे दोस्तों को जरा समझा दीजिए कि ये IVFCM होता क्या है।
1: बिल्कुल बतावेंगे जी, और आसान भाषा में समझावेंगे, थारी वाली भाषा में, हमारी वाली भाषा में। देखो, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM कोई अलग दवा है या कोई जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझें तो ये शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है, जिसमें आयरन नस के रास्ते दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जावे है, या डॉक्टर को लगे है कि तेजी से सुधार जरूरी है, तब यो वाला विकल्प चुना जावे, इसका विचार करा जावे इस पे।
0: अच्छा, यानी ये एक सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, यो बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिला की स्थिति को समझा जाता है, उसके बाद डॉक्टर निर्णय लेते हैं।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार होता है।
1: बिल्कुल सही कहा जी आपने, यही कारण है हम बार बार कहते हैं पहले जांच, फिर सलाह, फिर उपचार।
0: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
1: हाँ जी, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में यो दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक महिला को देखा भी जावे है और कुछ स्थिति सामान्य रहे तब आगे की कार्यवाही भी होवे। फिर
0: क्या ये अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जा सकता है?
1: ना जी, ऐसा जरूरी तो ना है, लेकिन यो हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही किया जा सके।
0: यानी आपका मतलब ये है कहने का कि अपने मन से उपचार करवाना ठीक नहीं, जैसे कि अक्सर हम लोगों की आदत होती है ना कि अपने खुद से मन से डॉक्टर बन जाते हैं और कोई भी इलाज करवा लिया, कोई भी ट्रीटमेंट ले लिया।
1: ना जी ना, ऐसा बिल्कुल ना करना। सही रास्ता हमेशा जांच और डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में हो तो वही बढ़िया।
0: टीकन देवी जी आप क्या कहेंगी?
2: देखो मैं भी एक बात जोड़ना चाहूंगी, कई बार क्या होता है परिवार डर जाता है कि ड्रिप लगेगी तो बीमारी बहुत बड़ी हो सके, लेकिन ऐसा जरूरी ना है। IVFCM जो होता है वो एक प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सके, लेकिन ये केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही दिया जाना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सेहतिया जी एक बात और, कई श्रोता हमारे लिसनर्स ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार ही क्यों करते हैं?
1: इसका भी बता दें मैं जी।
0: जी
1: देखो बात यो है, क्योंकि मध्यम या गंभीर एनीमिया केवल कमजोरी का विषय ना है, यो माँ और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके। माँ और बच्चे दोनों के लिए तो हो गया है यो, इसलिए जब डॉक्टर को लगे है कि आयरन की कमी को जल्दी और प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब वो IVFCM जैसे विकल्प पे विचार कर सकते हैं।
2: और बिल्कुल सही कहा आपने सेहतिया जी। और मैं एक बात परिवारों से भी कहना चाहूँ
0: जी
2: कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह देवे तो उसे लेकर डरे ना, अफवाहों में ना पड़े, पहले पूरी जानकारी लें, सवाल पूछें जो भी आपके मन में आ रहे हैं, और स्वास्थ्य कर्मी की बात को भी समझने की कोशिश करें।
0: जी सेहतिया जी, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिला की कमजोरी को दूर करना होता है?
1: ना जी ऐसा तो ना है, इसका बड़ा उद्देश्य जो है वो माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम में योगदान देना है, मतलब उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। और जब एनीमिया का समय पर इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में इससे बढ़िया मदद मिल जा।
0: यानी फायदा केवल माँ को नहीं बच्चे को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है? टीकन जी आप बताएं इसके बारे में।
2: जी बिल्कुल बताऊंगी। देखो परिवार की बहुत बड़ी भूमिका, पहला गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से ले, दूसरा स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को लेके भी जाएं।
0: अच्छा,
2: उसमें बिल्कुल देरी ना करें।
0: ठीक है।
2: और तीसरा जांच में साथ जाएं, उसे अकेले ना भेजें।
0: अच्छा।
2: चौथी बात मैं बताऊं आपको, गोली समय पर हो और सही तरीके से उसकी महिला की मदद करें।
0: ठीक है।
2: और इससे अगली बात ये कि किसी परेशानी की स्थिति अगर हो रही है तो स्वास्थ्य कर्मी से बात जरूर करें। और आगे बताऊं, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे रहा है ना तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाने में मदद भी करें।
0: अच्छा।
2: क्योंकि इसमें कमजोरी भी आ जा जब एनीमिया हो जा। और सातवां बताऊं आपको,
0: बताओ,
2: घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करावे उसे।
0: अच्छा।
2: और आठवां, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष न दें बार बार।
0: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है सेहतिया जी?
1: बिल्कुल हो जी, निगरानी होनी चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए। देखो अंग्रेजी का शब्द आ गया मेरे मुंह से
0: जी।
1: आगे बात करूं तो महिला की पुनः जांच होनी चाहिए, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी उसे। ठीक है, पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है, ये सबसे बढ़िया बात है।
0: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना बेहद जरूरी होता है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, संपर्क बनाए रखो जी।
0: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं के बारे में बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी। सिहतिया सिंह जी, आप क्या कहेंगे?
1: गलत। IVFCM देने का निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। केवल ड्रिप लगने का मतलब यो ना है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
0: यानी IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए। टीकन जी, आप क्या कहेंगे?
2: ना ना, ऐसा भी ना है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। IVFCM जो होता है वो हर महिला के लिए नहीं होता, ये केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जावे जहां डॉक्टर को उसकी आवश्यकता दिखाई दे।
0: अगर IVFCM लग गया तो आगे किसी जांच या फॉलोअप की जरूरत नहीं रहती?
1: क्यों ना रहती जी, ये तो गलत बात है। फॉलोअप तो जरूर रखना चाहिए, निगरानी जरूर रखनी चाहिए। अच्छा। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी की जाती है, ऐसा नहीं होता।
0: बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं क्योंकि घर पर ही डॉक्टर बुला लेते हैं, घर पर ही सारी चीजें कर लें, तो क्या IVFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
2: देखो मैं बताऊं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जावे, घर पर ये बिल्कुल नहीं होने का।
0: यानी अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए? सेहतिया जी,
1: ना गलत है यो, ऐसा भी ना है। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग अलग हुए है, उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होता है।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया जी और टीकन जी। इसी के साथ ये प्रोग्राम दोस्तों समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य हैं। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच करवाइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन जरूर करना चाहिए। कुछ स्थितियों में IVFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं, क्यों टीकन जी?
2: और मेरी तरफ से एक और संदेश मैं देना चाहूँ, सारी बात आपकी बढ़िया लगी मुझे
0: जी,
2: लेकिन एक बात ये भी है कि खून की कमी को कभी भी लंबा ना खींचना चाहिए, चाहे गर्भावस्था हो या ना हो। लेकिन गर्भावस्था अगर चल रही है तो समय पर जांच करवाना बड़ा जरूरी, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिला को परिवार का पूरा सहयोग मिलना चाहिए।
1: देखो जी, मैं तो एक बात कहूँ, यो बात याद रखने लायक है, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम संभव हो सके हैं, इसलिए जांच करवाओ और देखभाल बढ़िया सी रखो जी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और दोस्तों, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव के बाद

0: की अवस्था यानी पीएनसी के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे स्मार्ट एनजीओ के तत्वाधान में मिलकर जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, सेहत सही लाभ कही। और जैसा कि पिछली कड़ी में भी आपने सुना, हम बात कर रहे थे एनीमिया के बारे में, गर्भवती महिलाओं के बारे में। और इस कार्यक्रम को और ज्यादा रोचक और जानकारी से भरपूर बनाने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। दोस्तों, पिछले दो कार्यक्रमों में हमने गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जाँच, IFA MMS, पोषण और मध्यम तथा गंभीर एनीमिया में IVFCM जैसे उपचार और उनके विकल्पों के बारे में बात की। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ का क्या? क्या प्रसव के बाद कमजोरी होना हमेशा सामान्य बात है? क्या खून की कमी प्रसव के बाद भी बनी रह सकती है और इसका असर

0: मां और नवजात शिशु दोनों पर कैसे पड़ सकता है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए, जैसे मैंने बताया, सेहतिया सिंह जी और टीकन देवी दोनों हमारे साथ हैं। सेहतिया सिंह जी, अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद कमजोरी होना सामान्य सी बात है, क्या ये ठीक बात है?
1: देखो जी, प्रसव के बाद शरीर को आराम और रिकवरी की बहुत जरूरत हो है, इसलिए कुछ थकान महसूस होना सामान्य बात हो सके है। लेकिन अगर कमजोरी लगातार बनी रहे, चक्कर आवे, सांस फूलने लगे, रोजमर्रा का काम मुश्किल लगे, या महिला बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस करे, तो इसे नजरअंदाज कतई ना करना चाहिए जी।
0: यानी ये खून की कमी का संकेत भी हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सके जी, और यही कारण है कि प्रसव के बाद भी माँ का स्वास्थ्य पर ध्यान देना घना जरूरी है।
0: टीकन देवी जी, क्या आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो हमारे श्रोताओं को इस बात का महत्व समझा सके?
2: बहुत बढ़िया लगता है मुझे जब मैं यहाँ आती हूँ और आपको बताती हूँ कुछ ऐसी बातें जो महिलाओं से संबंधित हैं। और भैया, मैं जब तो एक बात समझ में आई तब मुझसे कहानी सुनो।
0: वो क्योंकि आप बहुत अच्छे से कहानी के द्वारा समझा देती हो।
2: देखो, मैं अपने गांव की शबाना की कहानी आज बताऊंगी।
0: जी जी, सुनाइए। ठीक,
2: देखो, शबाना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया और इसके चलते घर में हो गए सब खुश।
0: अच्छा।
2: और लेकिन कुछ हफ्तों बाद ऐसा हुआ कि शबाना को होने लगी बहुत ज्यादा कमजोरी।
0: ठीक।
2: वो बहुत जल्दी थक जाती थी, बच्चे को गोद में लेके उससे ज्यादा देर खड़ा ना हो जावे। और फिर घर वालों ने कहा अभी बच्चा हुआ तो थोड़ा सा टाइम लग सके। लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मी ने आके घर पे उसके हालचाल पूछा तो आगे जांच की उसे सलाह दी।
0: ठीक है।
2: और तब जाके पता चला उसमें तो खून की कमी यानी एनीमिया है।
0: फिर क्या हुआ?
2: फिर क्या, उसे स्वास्थ्य केंद्र से उचित सलाह मिली, परिवार ने भी उसका साथ दिया और धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हो गई और वो अपने बच्चे की देखभाल अधिक आराम से करने लगी।
0: यानी बच्चे के जन्म के बाद या प्रसव के बाद की कमजोरी को भी गंभीरता से लेना चाहिए। टीकन जी,
2: बिल्कुल लेना चाहिए, मैं तो नू कहूँ बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए।
0: सेहतिया जी, प्रसव के बाद एनीमिया का असर केवल माँ पर पड़ता है या कुछ असर बच्चे पर भी हो जाता है?
1: देखो जी, माँ और बच्चे पे दोनों पे इसका असर पड़ सके, प्रभाव पड़ सके, समझ रहे? अगर माँ लगातार कमजोर रहेगी तो उसकी रिकवरी प्रभावित भी हो सके है।
0: और बच्चे के बारे में, उसके संदर्भ में?
1: देखो, साफ सी बात है, जब माँ स्वस्थ रहेगी तो अपने नवजात शिशु की देखभाल भी बेहतर तरीके से कर पाएगी, इसलिए माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी।
0: यानी स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव होती है।
1: अजी, बहुत बढ़िया बात कह दीजिए आपने, सही कह दिया आपने।
0: अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रसव के बाद भी जांच करवानी चाहिए?
1: हाँ जी, अगर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर सलाह दे में या महिला में कमजोरी बने रहे तो जांच करवाना जरूरी हो जावे है।
0: यानी बच्चे के जन्म के बाद स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क खत्म नहीं होना चाहिए?
1: ना, बिल्कुल ना जी, ऐसा तो ना हो तो बेहतर ही है। गर्भावस्था के दौरान मिली सलाह और प्रसव के बाद भी देखभाल, दोनों मिलकर अच्छे स्वास्थ्य परिणाम देवे ही देवे जी।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। टीकन देवी जी, शबाना की कहानी सुनकर एक बात समझ में आती है कि कई बार महिलाएं खुद भी अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर देती हैं।
2: बिल्कुल कर देती हैं। मैं बताऊं, ज्यादातर महिलाएं ऐसी मिलेंगी आपको जो नजरअंदाज कर देवे। असल में प्रसव के बाद अक्सर महिला का जो ध्यान है वो पूरा पूरा चला जाता है बच्चे पे। वो ये सोचती है कि पहले बच्चे की जरूरत है, पहले बच्चा है, उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, और अपनी तकलीफ को रख देती है वो साइड में कि बाद में देख लेंगे। लेकिन मैं बताऊं, ये जो सोच है ना, कई बार परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देता है।
0: यानी माँ खुद को सबसे आखिर में रख देती है और यही सबसे बड़ी मुसीबत बनती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे समाज की यही बात है जो मुझे बड़ी खराब लगे, और ये बात बड़ी आम भी हो चली। मतलब अगर बच्चा रो रहा है, घर का काम हो, मेहमान आ रहे हो, तो महिला अपनी कमजोरी नहीं देखने की, उसे ये नहीं दिखने का कि उसे चक्कर आ रहे हैं, थकान आ रही है, वो इन सब के बारे में बताने की भी नहीं, हिचक जाएगी। लेकिन कई बार उसे लगता है कि लोग ये कहेंगे कि उसे ज्यादा परेशानी होती रहे।
0: लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। टीकन जी,
2: बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए।

0: ये कह रही हूं कि जितनी जरूरी बच्चे की देखभाल है उतनी ही जरूरी माँ की भी देखभाल हो।
1: जी सेहतिया सिंह जी, प्रसव के बाद या बच्चे के जन्म के बाद महिला के जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं, क्या ये भी उसकी सेहत को प्रभावित कर सकता है?
2: बिल्कुल जी, बच्चे के जन्म के बाद महिला की दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाती है। रात में कई बार उठना पड़े है, आराम कम हो जाता है, शरीर प्रसव से उबर रहा होता है इस टाइम में, ठीक है, और साथ ही नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी माँ की रह पूरी पूरी।
1: यानी ये केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, इसलिए इस समय में परिवार का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है जी। अगर महिला को आराम का समय मिले, उसकी बात सुनी जावे और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जावे तो उसकी रिकवरी बेहतर हो सके, मैं कहूं बढ़िया हो सके।
1: टीकन देवी जी, क्या परिवार कभी जाने अनजाने में ऐसी बातें कह देता है जिससे महिला अपनी परेशानी बताने से बचने लगती है या बताने में हिचकना शुरू कर देती है?
0: ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी।
1: अच्छा,
0: ऐसा बहुत ज्यादा होता है। और जैसे परिवार में कोई ये कह दे, हमारे समय में भी ऐसे ही होता रहा, थोड़ी कमजोरी तो हो गई है, इतना मत सोचा करो, सब ठीक हो जाएगा। या कभी कभी महिलाएं कह दे, तमने अनोखा करा, हम कराई ना। ये बातें सुनने में बड़ी नॉर्मल सामान्य लग सके, लेकिन इससे क्या होता है, इससे महिला अपनी समस्या ही बताना बंद कर दे।
1: ये बात बिल्कुल गलत है, इसको समाज में ठीक करने की जरूरत है। गर्भवती महिला या बच्चे के जन्म के बाद, प्रसव के बाद महिला की बात को सुनना उसकी देखभाल का हिस्सा है, क्यों टीकन जी?
0: बिल्कुल, इसको उसकी देखभाल का हिस्सा जरूर मानना चाहिए। मतलब अगर कोई महिला बार बार ये कह रही है कि उसे कमजोरी फील हो रही, चक्कर आ रहे, या उसे लग रहा है कि वो पहले जैसी नहीं रही, तो उसकी बातों को सबसे पहले तो गंभीरता से सुनना चाहिए।
1: सेहतिया सिंह जी, क्या प्रसव के बाद, बच्चे के जन्म के बाद स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क बनाए रहना भी जरूरी होता है?
2: बिल्कुल जी बिल्कुल, कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया, अब स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत खत्म होगी, लेकिन ऐसा ना है। प्रसव के बाद भी स्वास्थ्य कर्मी की सलाह, घर पर मुलाकात और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना बड़ा जरूरी है जी।
1: यानी माँ की देखभाल की कहानी प्रसव पर खत्म नहीं होती?
2: ना जी ना, बिल्कुल खत्म ना होती। वास्तव में प्रसव के बाद का समय भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना गर्भावस्था का समय।
1: क्यों टीकन देवी जी, आप क्या कहेंगे?
0: मैं भी यही कहूंगी कि प्रसव पर खत्म नहीं होती बिल्कुल भी माँ की देखभाल, बाद में भी उसकी सेहत और उसका ध्यान बड़ा जरूरी। और इसी बारे में मैं अपने जो श्रोता हैं और जो जिन महिलाओं ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, उनके परिवारों से ये कहना चाहूंगी कि जब घर में नया बच्चा आता है ना, तो केवल बच्चे की खुशियां मत मनाओ, उस माँ का भी ध्यान रखो जिसने उसे जन्म दिया है, और उसकी सेहत, उसका आराम और उसकी जरूरतें भी परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: सचमुच आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्वस्थ माँ ही नवजात शिशु को सबसे अच्छा सहारा दे सकती है। टीकन देवी जी, इस समय परिवार की भूमिका क्या होती है बल्कि क्या होनी चाहिए, ये भी बताइए।
0: देखो, ये बात तुमने घनी जोर की पूछी। पहले तो परिवार की भूमिका हो वह बड़ी महत्वपूर्ण। कई बार पूरा ध्यान बच्चे पे चला जा और माँ की जरूरतें ऐसे में पीछे छूट जा, लेकिन परिवार को याद रखना चाहिए कि माँ की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है, जिसने उस बालक को जन्म दिया है उसका भी देखभाल करनी उतनी जरूरी।
1: परिवार क्या क्या कर सकता है, मतलब परिवार को क्या क्या करना चाहिए?
0: देखो, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि माँ को पर्याप्त आराम मिलना चाहिए, इसका ध्यान परिवार को रखना चाहिए। और दूसरा, उसे समय पर पौष्टिक खाना मिलना चाहिए। तीसरा, अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत पड़ रही है तो परिवार उसके साथ जाए, और इसमें परिवार को साथ भी देना चाहिए। इसके आगे बताऊं, अगर कोई दवा या पूरक खुराक उसे दी गई हो तो उसे नियमित रूप से लेने में उस महिला की मदद करें। और सबसे जरूरी, उसकी कमजोरी या परेशानी को नजरअंदाज ना करें, उसे बिल्कुल भी ऐसे ही न समझे कि यूं तो होता ही रहे।
1: आपने बिल्कुल जरूरी बात

0: नहीं कि उसके स्वास्थ्य को हम पीछे छोड़ दें। क्यों टीकन जी?
1: बिल्कुल सही कह दिया आपने। अगर प्रसव के बाद भी कमजोरी बनी हुई है, अगर उस महिला को चक्कर आ रहे हैं या उसे लग रहा है कि शरीर पहले जैसा नहीं रहा, तो उसे बिल्कुल सामान्य मानकर बाद के लिए टालो मत।
2: हाँ जी, बिल्कुल सही कह दिया टीकन ने। समय पर जांच, सही सलाह और उचित देखभाल से माँ को रिकवरी करने में मदद मिले, उसकी रिकवरी बेहतर हो सके इससे। और जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे की देखभाल भी बेहतर तरीके से कर पाएगी।
0: दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी आज हमें यहाँ पर मिली। टीकन देवी जी और सेहतिया सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलते चलते आज के कार्यक्रम की चार महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य हैं। पहली, प्रसव के बाद भी खून की कमी बनी रह सकती है। बच्चे का जन्म हो गया, खून की कमी हो सकती है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी, लगातार कमजोरी या चक्कर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरी, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाइए, आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ को पौष्टिक भोजन, आराम और पूरे परिवार का सहयोग मिलना चाहिए। क्यों टीकन देवी जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए।
0: सेहतिया सिंह जी, आप क्या कहेंगे?
2: भाई मैं तो नो कहना चाहूंगा। समय पर पहचान और उचित देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम ला सके हैं, यही कहना चाहूंगा।
0: जी, बहुत अच्छी बात आप दोनों ने कही। इसी संदेश के साथ आज के इस खास कार्यक्रम की इस कड़ी को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। और ये कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।

दोस्तों आज हम बात करेंगे टीबी नामक रोग के बारे में, यानी क्षय रोग। अगर समय पर पहचान हो जाए तो टीबी का पूरा इलाज संभव है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इस बीमारी का नाम क्षय रोग, टीबी रोग या ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ये सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों, दिमाग, किडनी और रीढ़ की हड्डी में भी ये हो सकता है। हमारे एक एक्सपर्ट डॉक्टर के अनुसार नाखून और बाल को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में ये बीमारी हो सकती है। टीबी फैलती कैसे है? जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या जोर से बोलता है तो हवा में छोटे छोटे कीटाणु फैल जाते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें सांस के साथ अंदर ले ले तो उसे भी ये संक्रमण हो सकता है। ध्यान रखें, टीबी हाथ मिलाने से, साथ बैठने से, खाना साथ में खाने से या एक दूसरे के कपड़े छूने से नहीं फैलती। टीबी के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों, 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक लगातार खांसी रहती है, बलगम में खून आता है, बुखार विशेषकर शाम के समय चढ़ता है, रात में ज्यादा पसीना आता है, तेजी से वजन घटता है, भूख कम लगती है, कमजोरी और थकान ज्यादा महसूस होने लगे। यदि ये लक्षण दिखाई दें, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क कीजिए। सरकार पूरी तरह से निःशुल्क आपको इसका पूरा इलाज मुहैया कराती है। सरकार टीबी के मरीजों की किस प्रकार और मदद करती है? सबसे पहले सरकार का एक लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत। सरकार द्वारा टीबी की जांच निशुल्क की जाती है, पूरी दवा बिल्कुल निशुल्क मुफ्त दी जाती है, मरीज का इलाज और नियमित फॉलोअप भी किया जाता है। इलाज के दौरान पोषण के लिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत मरीजों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वे पौष्टिक भोजन कर सकें। कई स्थानों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता मरीज के घर तक दवा पहुंचाते हैं और दवा नियमित लेने में भी मदद करते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज आपको दिखता है जिसको टीबी हो सकती है या किसी को टीबी है, उसकी मदद आपको भी करनी चाहिए। टीबी की दवाएं सरकारी अस्पताल पर बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं। आप इन्हें हमेशा समय से लेकर तयबद्ध तरीके से खाएं। इलाज को पूरा करना है, कभी भी इलाज को बीच में नहीं रोकना है। एक बार टीबी की दवा शुरू होने पर अगर आप इलाज बीच में रोकते हैं तो कुछ समय बाद टीबी वापस लौट कर आती है और पहले से ज्यादा भयानक रूप के साथ आती है, यानी पहले जो टीबी हुई थी उससे भी ज्यादा खतरनाक इस बार ये बनकर लौटी है। बीमारी दोबारा लौट सकती है, पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है, दवाओं का असर भी कम हो जाता है और इस बार टीबी को नाम दिया गया है MDR टीबी, यानी पहले से भी भयानक टीबी। इसीलिए कभी भी टीबी बीमारी की दवाइयों को रोकना नहीं है, इलाज पूरा करवाना है। डॉक्टर जितने महीने जितने समय दवा खाने के लिए बोलें, इलाज पूरा कराएं। आपकी तमाम जांचें बिल्कुल निशुल्क सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं, सभी दवाइयां सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं। सरकार मरीज को पैसे से भी मदद करती है, दवाइयों से भी मदद करती है और समय समय पर निक्षय पोटली यानी के खाने के लिए प्रोटीन युक्त कुछ चीजें भी देती है। तो आगे से हमेशा हमें ध्यान रखना है, लगातार खांसी रहे तो जांच कराएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढक लीजिए, घर में ताजी हवा और धूप आने जाने का रास्ता हमेशा होना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, धूम्रपान, तंबाकू और शराब से दूरी बनानी है। डॉक्टर ने जो बात बताई है, जो दवाइयां बताई है, उनको नियमित रूप से और पूरा लेना है। कोई भी दवा बीच में नहीं रोकनी, अपनी मर्जी से कोई दवा बढ़ानी नहीं है, कोई दवा घटानी नहीं है। मरीज के संपर्क में जो लोग आ गए हैं उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए। अगर किसी परिवार में किसी को टीबी है, उस परिवार के तमाम लोगों की जांच निशुल्क होती है, करानी चाहिए। छोटे बच्चों की भी जांच करानी चाहिए और कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अंतिम संदेश, याद रखिए, टीबी छिपाने की नहीं, इलाज कराने की बीमारी है। बहुत से लोग टीबी को छुपा कर रखते हैं, सामाजिक शर्म की वजह से, हीन भावना की दृष्टि से बचने की वजह से। लेकिन दोस्तों, टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। जिन लोगों ने सरकार की मदद से टीबी का पूरा इलाज कराया है, आज वे बिल्कुल अच्छी तरह से स्वस्थ हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। इसीलिए अगर कभी भी
आपको ऐसा लगे कि टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर संपर्क कीजिए या आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। आज की ये कड़ी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट एनजीओ, जिसे आपने सुना सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चलते चलते मिलकर संकल्प लें, टीबी को हराना है, भारत को टीबी मुक्त बनाना है।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
5: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
6: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Here we go, आरजे वंशी in the studio. Hey, hello, नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे वंशी। और जनाब, गुड वाली मॉर्निंग है, गुड वाला प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। कुछ ऐसी गल्ला शल्ला करती हूँ जो हो जाती है आपसे रिलेटेड, isn't it? तो चलिए आज का फॉर्मूला ऑफ द डे आप तक पहुँचाती हूँ जो कुछ यूँ कहता है, सुनिएगा जरा। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियाँ बदलते हैं, जड़े नहीं जनाब। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो जनाब जरा अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और ये देखिए कि आप खामियां गलतियां कहां कर रहे हैं, कहां आपसे चूक हो रही है कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन मुकाम हासिल करना है तो जनाब सफर तो तय करना पड़ेगा, और सफर के लिए रास्ता कौन सा आपको चुनना है वो आप तय करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सही रहे, और आप जीवन में हमेशा सही रास्ते पर ही चलते रहें। और इवन कभी कभी पता है क्या होता है, आप भीड़ के पीछे चलना प्रेफर करते हैं, लेकिन जनाब भीड़ आपको बेशक रास्ते तक ले जाए, लेकिन पहचान तो आपको अलग रास्ता ही देकर जाता है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको लेकर चलूंगी इस अपकमिंग गाने की, और बाकी आपको कुछ कहना है, कुछ बताना तो घुमा सकते हैं, लगा सकते हैं 9639012111 बिंदास होकर। फिलहाल अभी ये गाना आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपने स्किन का ध्यान रख सकते हैं और उसकी केयर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही रूटीन आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आप रेगुलर बेसिस पर भी कर सकते हैं। असल में जब आपको लगता है कि आप की स्किन जो है बहुत ही ऑयली हो गई है या फिर आपको उसको ऑयल फ्री बनाना है, तो आप कौन कौन से तरीकों को अपना सकते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप होता है क्लींजिंग का। आप दिन में कम से कम दो बार सैलिसिलिक एसिड अगर इस्तेमाल करते हैं या फिर आप इसकी प्लेस पर टी ट्री ऑयल वाले फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये त्वचा के लिए इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि ये त्वचा में छिपे गहरे छिद्रों में जमे अतिरिक्त तेल को साफ कर देता है और इससे जो है आपकी स्किन ऑयल फ्री हो जाती है। वहीं बात करें अगर टोनिंग की, तो टोनिंग क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बढ़े हुए पोर्स को सिकुड़ने में मदद करता है। और उनको आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपको लेना होगा अल्कोहल फ्री टोनर या फिर आप शुद्ध गुलाब जल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे भी आपको लगेगा कि आपकी जो स्किन है, अगर आपको उस पे एक्सेस ऑयल नजर आ रहा है या फील हो रहा है या फिर चिपचिपाहट आपको लग रही है, तो ये स्टेप आपको काफी हद तक कामयाबी दे सकता है। और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगे सारी की सारी और बताऊंगी बाकी की चीजें भी। बट अभी क्या करेंगे, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों। और इसी के साथ आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझसे साझा कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है मेरा, 9639012111। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं सेम ही नंबर पर। हमारे सोशल हैंडल्स पर जुड़ जाइए और अपनी सारी बातें हमसे कह डालिए। रेलेवेंट पोस्ट में आप हमें टैग भी कर सकते हैं और हमसे कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, है ना, मजे की बात। चलिए इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ अभी कोलैबोरेट करेंगे, एंजॉय करेंगे ये गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों। ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद।

यूज कर सकते हैं और याद रखें कि टोनर आपका अल्कोहल फ्री हो। और साथ ही साथ अगर आप टोनर नहीं लगाना चाहते तो जो गुलाब जल होता है वो अपने आप में एक नेचुरल टोनर होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बताऊं कि मॉइस्चराइजिंग आपको अपनी स्किन रखनी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों की ऐसी स्किन होती है जो बहुत ज्यादा चिपचिपाहट वाली होती है। तो आपको क्या करना है, आपको त्वचा में नमी की कमी आपको नहीं होने देनी है। और अगर ऐसा होता है तो होता ये है कि आपकी स्किन में ज्यादा तेल बनने लगती है और इसीलिए आपको जेल बेस्ड वाले या फिर वाटर बेस्ड वाले मॉइस्चराइजर को चूज करना चाहिए और उसको लगाते रहना चाहिए। बाकी और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी, बट मीनवाइल अभी इंजॉय करेंगे अपकमिंग गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
4: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, ढेर सारी बातें आपके साथ चल रही हैं और मैं आपको बता रही हूँ कुछ डेली होम केयर रूटीन में आप किस तरीके से अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लींजिंग के बारे में, टोनिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने बात की मॉइस्चराइजिंग के बारे में भी। लेकिन एक और चीज है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो है आपकी सनस्क्रीन। भले ही आसमान में बादल हो, सूर्य की जो हानिकारक यूवी किरणें होती हैं, वो मैं आपको बता दूं, हमेशा ही आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होती हैं। तो आपको सेहतमंद रखने के लिए, यानी कि अपनी स्किन को सेहतमंद रखने के लिए, जेल सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपकी जो स्किन है वो ऐसी चमकती रहे और उसको कोई किसी प्रकार की डैमेज ना होने पाए। इसी के साथ आपको बता दूं कि आप बहुत सारे फेस पैक्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी कई बार बातें की हैं, लेकिन फेस पैक्स हमारे पास इतने सारे हैं कि जिसके बारे में अगर मैं आपको रोजाना भी थोड़ा थोड़ा बताऊं तो वो नहीं, अभी इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं खत्म होने वाले। फिलहाल आपको बताऊंगी शहद और पपीता किस तरीके से आपकी बेजान और रूखी त्वचा के लिए अच्छा होता है। अब इसका पैक आप कैसे बना सकते हैं, आपको चाहिए 2 चम्मच मैश किया हुआ पका हुआ पपीता, क्योंकि ये आपके पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो आप बाकी जो आपका पपीता बचेगा उसको खाने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। वहीं ये बच्चों के पेट के लिए भी अच्छा होता है, तो उनको भी आदत डलवाइए अपने बच्चों को, और उसके बाद फेस पैक पर आइएगा, क्योंकि जनाब अंदरूनी शरीर को स्वस्थ रखना है और साथ ही साथ बाहरी शरीर को भी आपको सुंदर रखना है। तो इसलिए आपको चाहिए 2 चम्मच मैश किया हुआ पका हुआ पपीता और 1 चम्मच शहद। अब इसे क्या करना है, आपको इसको चेहरे पर लगाकर कम से कम 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। पपीते के नेचुरल एंजाइम्स जो होते हैं वो आपकी डेड स्किन्स को निकाल देते हैं, हटा देते हैं, और शहद क्या करता है, आपकी स्किन को नमी देता है। वहीं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को शहद सूट नहीं करता है, तो ये आपके ऊपर है, आपको अप्लाई करने से पहले इस चीज को देख लेना होगा, परख लेना होगा कि कहीं शहद से आपकी स्किन रिएक्ट न कर जाए, है ना। फिलहाल चलिए, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगे सारी के सारी, बट मीन वाइल एंजॉय करेंगे ये अपकमिंग गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, इसी के साथ ये गाना आप लोगों के नाम।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम आरजे वंशी के साथ।
1: वेल वेल वेल, वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूं और इसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। कुछ बातें आपसे करती हूं इस प्रोग्राम में जो हो जाती है संसार से रिलेटेड, तो वहीं कुछ बातें आपसे करती हूं जो होती है आपकी सेहत से रिलेटेड, वहीं कुछ बातें होती है जो होती है हमारी सखियों से, और कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आपको बताती हूं जो आपकी लाइफ को और भी ज्यादा सिंपल और सॉर्टेड कर देता है ना। तो कुछ ऐसे ही टिप्स आपसे साझा करती हूँ। वहीं अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है हमारा, 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, बिल्कुल लाइव आपसे बातें होती हैं। तो इस दौरान आप फरमाइशें भी कर सकते हैं किसी गाने की, और साथ ही साथ किसी गाने को आपको किसी को डेडिकेट करना है तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। कुछ अच्छा लिखना जानते हैं तो वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर कोई और भी कलाकार है तो इसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, और हमें पसंद आएगा कि अगर आप अपनी कला हमसे साझा करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि अब आपका जो रेडियो है आजाद हिंद रेडियो, वो बहुत सारे सोशल हैंडल्स पर मौजूद है, यानी कि आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ आप जा सकते हैं मेटा पर भी, जिसको आप फेसबुक के नाम से भी जाना करते हैं। वहीं आप जा सकते हैं एक्स पर, तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पर भी। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको दुनिया के किसी भी कोने में से मिल सकते हैं, वो है आपका प्ले स्टोर। आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, जिसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। बच्चा तलक भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, और हमसे जुड़ जाइए और यूं ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। फिलहाल आपको जोड़ूंगी इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities

0: expertise like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: You are listening to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. Well, दोस्तों बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ चलिए कुछ एडवांस डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको बता देती हूँ। असल में आजकल क्योंकि हम इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल में रहते हैं कि हमें ना अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप सेल्फ केयर करते हैं तो वो आपका स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका अधिकार भी है। इसीलिए सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपने लिए कम से कम दिन में आधा घंटा तो जरूर निकालना चाहिए, फिर चाहे वो हमारी माताएं हो, बहनें हो या फिर हमारे भाई जन हो। इसी के साथ दोस्तों आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से अपनी स्किन को और भी ज्यादा बेहतर और अच्छे से रख सकते हैं। असल में आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है केमिकल पील्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना होता है सैलिसिलिक एसिड और साथ ही होता है ग्लाइकोलिक एसिड। इसकी मदद से त्वचा की ऊपरी जो डेड स्किन होती है, जो डेड लेयर होती है, वो उसको निकालने में हेल्पफुल होता है। और आपको बता दूं कि ये क्या करता है, ये जो आपके रोम छिद्र हो जाते हैं ना, जो बंद हो रखे होते हैं ऑलरेडी, उनको तुरंत खोलता है और मुहासों को आने से भी रोकता है। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन को तंदुरुस्त रखने के लिए होता है। वही हाइड्राफेशियल क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन लेकिन लेकिन जनाब उसके लिए लगेंगे कुछ गाने और थोड़ा सा

अब थोड़ा सा इंतजार, चलिए इस गाने को एंजॉय करेंगे और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मुझसे जुड़ जाइए हमारे सोशल हैंडल्स के माध्यम से और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यानी के 9639012111 के माध्यम से भी। फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Well, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. दोस्तों ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। कुछ बातें आपसे करती हूँ इस प्रोग्राम में जो हो जाती है संसार से रिलेटेड, तो वहीं कुछ बातें आपसे करती हूँ जो होती है आपकी सेहत से रिलेटेड, वहीं कुछ बातें होती है जो होती है हमारी सखियों से, और कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आपको बताती हूँ जो आपकी लाइफ को और भी ज्यादा सिंपल और सॉर्टेड कर देता है ना। तो कुछ ऐसे ही टिप्स आपसे साझा करती हूँ। वहीं अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है हमारा 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, बिल्कुल लाइव आपसे बातें होती हैं। तो इस दौरान आप फरमाइशें भी कर सकते हैं किसी गाने की, और साथ ही साथ किसी गाने को आपको किसी को डेडिकेट करना है तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। कुछ अच्छा लिखना जानते हैं तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर कोई और भी कलाकार है तो इसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, और हमें पसंद आएगा कि अगर आप अपनी कला हमसे साझा करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि अब आपका जो रेडियो है आजाद हिंद रेडियो, वो बहुत सारे सोशल हैंडल्स पर मौजूद है, यानी कि आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर और साथ ही साथ आप जा सकते हैं मेटा पर भी, जिसको आप फेसबुक के नाम से भी जाना करते हैं। वहीं आप जा सकते हैं एक्स पर, तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पर भी। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको दुनिया के किसी भी कोने में से मिल सकते हैं, वो है आपका प्ले स्टोर। आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, जिसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। बच्चा तलक भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, और हमसे जुड़ जाइए और यूं ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। फिलहाल आपको जोड़ूंगी इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों।

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी। मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, आज ना ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं। बता रही हूँ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट सभी आपसे जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर के हो जाते हैं। वेल, आप सुन रहे हैं सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। और अभी तक हमने बातें की आप केमिकल पील्स का भी सहारा ले सकते हैं और साथ ही साथ हाइड्रा फेशियल भी करा सकते हैं। अब ये क्या होता है और क्यों ये फायदेमंद होता है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। असल में हाइड्रोफेशियल एक डीप क्लींजिंग और हाइड्रेटिंग थेरेपी है और इसका फायदा ये हो जाता है, कई बार ना ऐसा होता है कि हमारी त्वचा पर चिपचिपी गंदगी जो है वो जमा हो जाती है और आपको जरूरत पड़ती है कि आप गहराई से अपनी स्किन को साफ करें। तो यही काम हाइड्रोफेशियल करता है, ये गहराई से आपकी त्वचा को साफ करता है और उसको ग्लोइंग बना देता है ना कमाल की बात। वहीं बात करें अगर माइक्रो डर्माब्रेशन के बारे में, तो असल में इसके अंतर्गत क्या होता है, एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से आपके चेहरे को धीरे से एक्सफोलिएट किया जाता है। यानी कि इसका फायदा हो जाता है कि जो भी आपके स्किन पर ब्लैक हेड्स होते हैं या फिर व्हाइट हेड्स होते हैं, ये उनको पूरी तरीके से साफ कर देता है और आपकी स्किन को चमकदार और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। वेल, इसी के साथ और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी के सारी। बट अभी हम एंजॉय करेंगे कुछ और उसके बाद आई बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों, कुछ कहना है कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझसे साझा कर सकते हैं। नंबर बड़ा आसान सा है मेरा 9639012111, और चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी वॉइस नोट भेज सकते हैं। फिलहाल मैं भेजूंगी आप तक ये बहुत ही प्यारा सा गाना, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: हेलो आजाद हिंद रेडियो, राम राम। आम तो आजाद हिंद रेडियो अमे घणा लांबा समय थी सांभळे छे, अने जे एमाय आज जे वंशी बेन नो जे कार्यक्रम आवे छे बपोरे 11 वाग्या थी 1 वाग्या सुधी, ई कार्यक्रम नी तो वात ज एक अलग छे। एमा खूब मजा आवे छे अने साथे साथे आपणने पोताना पसंदगीना हिंदी सॉन्ग सांभळवानी खूब मजा आवे छे, अने साथे खास साथे जे सुरक्षानी जे सलामतीनी अने जे घरगथ्थु उपचार होय जे सर्दी खांसी आवी नानी नानी बाबतोनु वंशी बेन खूब नानी नानी वातोथी अमने अपडेट आपता रहे छे। ते बदल वंशी बेन नो हूँ दिलथी खूब खूब आभार मानू छू। अने गुजरात मा घणा बधा आजादी रेडियोना श्रोता मित्रो छे अने वंशी बेन नी वातो खूब सरस होय छे। नाना पाळ्યા થી મે જસમતભાઈ તાલુકો જિલ્લો બોટાદ ગુજરાત, આઝાદ હિંદ રેડિયો, ખુશ રહો આઝાદ મજામાં રહો, નમસ્તે।
1: યુ આર લિસનિંગ આઝાદ હિંદ રેડિયો 90.0 FM, રાષ્ટ્ર પ્રથમ સદૈવ પ્રથમ।
2: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
2: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
2: तुम्हें पता भी है देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता, वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर है, और तुम कहती हो बासी पानी? एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
2: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
3: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
4: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स। चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। प्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए

0: इस ऑपरेशन थिएटर 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी। मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेल वेल वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और प्रोग्राम में हमने ढेर सारी बातें तो की ही, कुछ बातें आपकी थी तो कुछ बातें मेरी थी। वहीं चलिए अभी ना एक ऐसी बात आपको बताने वाली हूँ जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है और अक्सर हम ये सोच बैठते हैं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है या प्रशासन पर है, तो भूल जाइए, क्योंकि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि प्रदूषण है या कचरा प्रबंधन है या पेड़ पौधों की जो कटाई है, ऐसे कुछ इश्यूज जो सिर्फ सरकार के अंदर ही आते हैं या फिर प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि सच बात ये है कि जब तक हर एक नागरिक इसे अपना व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं मानेगा, तब तक बड़े पैमाने पर बदलाव संभव है ही नहीं। आपको परेशानी हो सकती है बढ़ते प्रदूषण से, परेशानी हो सकती है कि कचरा प्रबंधन नहीं है ठीक से, या फिर परेशानी हो सकती है कि पेड़ पौधों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में आपको सचेत रहना होगा, आपको अवेयर रहना होगा और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनके दिखाना होगा, और साथ ही साथ छोटे छोटे स्टेप्स जो आपको अपनाने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग आपको करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक को आपको बिल्कुल त्याग देना है। चूंकि ये हमारी लाइफस्टाइल में इतनी ज्यादा मशगूल हो चुकी है कि इसको पीछे छोड़ना या इसके बिना रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आप इसके लिए जरूर अपने आप कुछ स्टेप्स बढ़ाएं ताकि जो आपके आजू बाजू के लोग हैं वो आपको देखकर इंस्पायर हों। बाकी पानी और बिजली की बचत करना, ये भी आप अपनी आदत में ला सकते हैं। जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं और एक एक बूंद की कीमत को समझें, और वहीं वृक्षारोपण जरूर करें। अपनी आने वाली पीढ़ी को साफ हवा और स्वच्छ पानी देने के लिए आप इस चीज को जरूर अपनी आदत में लाएं, क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी हो जाता है। तो याद रखें, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सरकार की या किसी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ये जन जन की जिम्मेदारी है। इसमें सभी की भागीदारी लगेगी, तभी काम आसान हो पाएंगे और तभी हम इस चीज को अटेन कर पाएंगे। फिलहाल चलिए अटेन तो करते रहेंगे, एंटरटेनमेंट जरूर रहेगा आपका आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। ये गाना सुनेंगे, फिर उसके बाद आई विल बी बैक टू यू।

हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि बुटानी और मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर और आप लोग सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत, सखी और संसार। और दोस्तों, हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें साझा की हैं। 9 बजे से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और इतनी सारी बातें आपसे करती हूँ। और आपके बीच जब कॉल से मैसेज आते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है कि हाँ, मेरा जो प्रोग्राम है वो सुना जा रहा है और आप तक मेरी बात पहुँच पा रही है। और खुशी इस बात की होती है कि आपकी बातें भी मुझ तक पहुँचती हैं, आपकी फरमाइशें भी मुझ तक पहुंचती हैं। तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन का हम अनुभव करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपसे कहूंगी कि अभी ना मेरा होचला है आपसे इजाजत लेने का समय, क्योंकि अगले प्रेजेंटर आते ही होंगे, उन्हें भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है ना। तो इसलिए उनके लिए कुर्सी मुझे खाली करनी होगी, जाना होगा स्टूडियो के बाहर, ताकि अगला प्रेजेंटर आए, अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट करे और आपसे ढेर सारी बातें करे, है ना। तो इसी के साथ मैं यही कहूंगी चलते चलते कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, खाना पीना जो है अपना सेहतमंद रखें, ऐसा खाना ना खाएं जिससे कि आपकी हेल्थ पर कुछ गलत प्रभाव पड़े या आपके बच्चे बीमारी की चपेट में आ जाएं। क्योंकि हम स्वाद के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जिसका बाद में जो परिणाम होता है वो फिर हमसे देखा नहीं जाता। तो इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पानी खूब पिए, और हो सके तो जब भी आपको लगे कि आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो आप उबला हुआ पानी भी ऑप्ट कर सकते हैं या प्योरीफायर का भी आप पानी ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आप हार्ड वाटर पीना प्रेफर करते हैं तो। और साथ ही साथ मैं यही कहूंगी आपसे कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि आपकी छोटी सी सावधानी आपके इस अमूल्य जीवन की रक्षा कर सकती है और दूसरे के जीवन की भी रक्षा कर सकती है। सतर्क होकर चलें और सुरक्षित होकर चले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे

ही मदमस्त रहिए। फिलहाल जाते जाते छोड़कर जाऊंगी आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मैं आपसे मिलूंगी कल इसी समय और इसी प्लेस पर और बहुत सारी बातों के साथ। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

0: ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ।
2: जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि राष्ट्र चेतना इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं देश को सबसे पहले प्रथम कैसे रखना है और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण योजना को हमें आगे कैसे बढ़ाना है। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे चर्चा की चरित्र के बारे में कि चरित्र क्या है, इसी विषय में और ज्यादा बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रितेश चौधरी जी को, जो कि पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के अध्यक्ष भी हैं सुभारती विश्वविद्यालय में। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद वास्तु कृष्णा जी। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं कि डॉक्टर अतुल कृष्णा जी ने जो अपनी किताब के अंदर विषय को लेकर चर्चा की है वो अपने आप में एक समग्र लिए हुए हैं
0: जी।
1: देखिये, वो इस बात को कहते हैं कि जो सद्विचार होते हैं किसी भी व्यक्ति के विचार
0: जी,
1: वो विचार ही हमारे कर्म का रूप धारण करते हैं। तो विचारों और कर्मों का ये जो मिला जुला स्वरूप है इसे हम लोग चरित्र मानते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, व्यक्ति का समाज में आचरण कैसा है, उसका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, अपनी प्रस्तुति कैसे समाज में देता है, और ये प्रस्तुति उसे उसके चरित्र को दिखाने में मदद करती है। तो व्यक्ति के कर्मों का विचारों के साथ जो मेल जोल है वो चरित्र है, और मैं इस बात से सहमत हूँ। और लोग प्राणी मात्र में, चाहे वो जीव हो जंतु हो, उनके प्रति दया का भाव रखता है, किसी सड़क चलती किसी समस्या का समाधान करने की सोचता है, वो पर्यावरण के प्रति रक्षण की सोचता है, तो उसके चरित्र को ही दर्शाता है।
0: पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं हमको उसके कई अलग अलग भाग मिलते हैं। जैसे सबसे पहले अगर सम्मान की बात की जाए, वहां पर जो लेखक है वो हमको ये समझाना चाहते हैं कि माता पिता और अपने से बड़ों का या गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, और बचपन से ही हमारे माता पिता भी इस चीज को सभी को सिखाते समझाते हैं। बावजूद उसके समाज में कई बार ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं जिससे पता चलता है कि किसी फला व्यक्ति ने माता पिता के साथ सम्मानजनक या बड़ों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। आपको क्या लगता है?
1: देखिए, मैं इस बात को तो मानता हूं कि जो सम्मान है वो व्यक्ति द्वारा अर्जित होता है
0: जी,
1: लेकिन हम अपने बच्चे को बचपन से इस बात को सिखाते हैं कि जो भी अग्रज है उनका हमें सम्मान करना है, उनकी बात को मानना है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ पर तो एक हम लोग कहते हैं कि सरहाने पे कभी भी बड़ों के बैठते
0: नहीं बैठते,
1: हमें उनके पैरों की तरफ बैठना होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमने रामायण काल का एक प्रसंग है कि जब सीता जी का अपहरण हो जाता है, उनकी खोज कर रहे हैं, तो एक कोई माला मिलती है, उसे देख के कहते हैं कि इसको पहचानिए। पूछते राम जो है वो पूछते हैं लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण कहता है कि मुझे उनके गले के हार का नहीं मालूम कि उन्होंने वो पहना है कि नहीं पहना है, हाँ कोई पायल होती तो मैं पहचान लेता क्योंकि मैंने तो माता सीता के हमेशा चरणों पर ध्यान लगाया है
0: जी, जी।
1: तो ये संस्कारों की और सद्विचारों की बात आती है। जो संस्कार होते हैं उनके साथ सद्विचार जुड़े होते हैं, सद्विचार से व्यक्ति मृदुभाषी होता है और उससे सम्मान का भाव झलकता है। तो हमें बड़े बुजुर्ग ही हैं जिनसे हम लोग निधि को संचित करते हैं, निधि उन्होंने हमें संस्कारों के रूप में क्या दिया है कि जो हमारी विरासतें हैं वो उन्होंने हमें दी हैं। विरासतों में हम कैसा परिवार में खाना बनाते हैं, हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, ये सारे संस्कारों का हिस्सा है। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडिजिनियस नॉलेज है, वो कहाँ से मिलती है, वो हमें हमारे बुजुर्गों से मिलती है, चाहे वो घर परिवार के हों चाहे समाज के हों। तो सम्मान बड़े बुजुर्गों का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी हैं।
0: सर, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई और जो उदाहरण आपने माँ सीता वाला दिया वो भी बहुत ही अच्छा है। सर, अब बात करें अगर हम सम्मान की अपने बड़ों की, माता पिता की या गुरुजनों की, वो ठीक है, उसके बावजूद कई बार परिवार आजकल टूटते हैं, एकल परिवार बन रहे हैं, माता पिता से भी झगड़ा हो जाता है या अपने बड़े भाई बहनों से झगड़ा होकर लोग अलग थलग हो जाते हैं, ये जबकि हमारी संस्कृति या परंपरा नहीं रही।
1: कृष्णा, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि आजकल जो है वो एक ग्रुप फैमिली के तौर पर ना देखे, ज्वाइंट फैमिली के तौर पर ना होके हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये परंपरा आज की नहीं है, दशकों से चली आ रही है। और इन सब की वजह है व्यक्ति का आत्म संयमित ना होना। देखिये, जो चरित्र है उसमें आत्म संयम एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। गुस्सा या आत्म संयम ना होने से आता है, लालच और जितनी भी अन्य नकारात्मक भावनाएं हैं उन पर नियंत्रण ना होना आत्म संयमित ना होना है। अब लालच की बात आती है, परिवार क्यों टूटते हैं, तो कई बार तो परिवारों को टूटने की वजहों में ये भी चीज शामिल होती है कि हमारा एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है। जब सम्मान नहीं होता तो विनम्रता का भाव होता है, यानी व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और मृदुभाषी होना चाहिए। अब वो मृदुभाषी नहीं रह जाता है, वो विनम्र नहीं रह जाता है, परिवार में जो भाषा का स्तर है वो गिरने लगता है, मन में लालच जन्म लेने लगता है, कई बार संपत्ति का लालच जन्म लेने लगता है, कई बार सिर्फ अपने हितार्थ सोचने का जो लालच है, जैसे हम कहते हैं ना परोपकार, हम परोपकार की भी बात करते हैं जो चरित्र का हमारे हिस्सा है, तो हमारे जहन से परोपकार की भावना वो खत्म होने लगती है, हम व्यक्तिगत हितार्थ सोचने लगते हैं, और जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो परिवार टूटने के कगार पे आ जाते हैं। तो फिर वही बात है कृष्णा जी की, चरित्र का होना, उत्तम चरित्र का होना बहुत जरूरी है।
0: आपने जो मूल बात बताई कि परिवार टूटते क्यों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सम्मान में कमी दिखाई देती है, तो एक दूसरे के प्रति फिर नकारात्मक भाव या झगड़े लड़ाई बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये संभव है अगर छोटे अपनों को छोटा जानकर और बड़े थोड़ा बड़प्पन दिखाकर एक दूसरे का सम्मान करें तो शायद ये परिवारों का टूटने का जो चलन है कम हो जाए।
1: बिल्कुल, ये तो कहा ही जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो मुझे लगता है कि संस्कारों में ये दोनों तरफ से भी शामिल होता है, हम सारा का सारा बोझ किसी छोटे पर नहीं लाद सकते हैं, बड़े को भी इस बात को समझना होगा कि अगर गलती किसी छोटे से हुई है तो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए।
0: अगर कोई परिवार टूटा है, बिखरा है दोस्तों, आप देखिएगा उसकी जड़ों में जाकर कि इसका बेस कहां पर है, लड़ाई शुरुआत कहां से हुई थी। तो जैसा आदरणीय सर ने बताया यहां पर कि शुरुआत में जरूर किसी न किसी के सम्मान को ठेस पहुंची होगी। आगे हम बात करते हैं सर विनम्रता की, आपने थोड़ी देर पहले भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया। विनम्रता जो होती है सर, ये किसी इंसान का सबसे अच्छा गहना होती है, क्योंकि एक विनम्र व्यक्ति, एक कहावत है सर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के कड़वा बोलने वाला अपनी शहद भी नहीं बेच सकता और मीठा बोलने वाला अपनी मिर्ची भी बेच जाता है।
1: देखिए, विनम्रता का तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, एक विनम्र व्यक्ति अपने व्यवहार से सब कुछ हासिल कर सकता है। जो अपने आप में, अभी आपने इस बात को खुद ही बताया है कि एक विनम्र व्यक्ति जो मृदुभाषी है वो अपने व्यवहार के कारण मिर्च को भी बेच सकता है
0: जी।
1: और जो सहज व्यक्ति है नहीं है, जिसकी भाषा में कटुता है, कठोरता है, वो शहद को भी नहीं बेच सकता। तो ये तो बहुत जरूरी सी बात हो जाती है। देखिए, कहा जाता है कि जमाने में है सुखनवर बहुत मगर
0: जी,
1: गालिब का अंदाजे बयां कुछ और। व्हाट इज दिस, अंदाजे बयां से क्या मतलब है? अंदाजे बयां कि आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, और उस प्रस्तुति में बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये क्या है कि आप कैसा बोल रहे हैं। तो हम जैसा बोल रहे हैं अगर उसमें विनम्रता है तो आप अपनी विनम्रता के कारण पूरी दुनिया को जीत सकते हैं और आप सब कुछ तबाह कर सकते हैं अगर आपके अंदर विनम्रता का भाव नहीं है
0: जी। दोस्तों, ये कड़ी आज की आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, हम अगले एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे। इस किताब के बारे में, राष्ट्रीय चेतना के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, अपने विचार भी आप हमारे साथ में शेयर जरूर करें। हमारा नंबर है 9639012111। सर, चलते चलते मैं चाहता हूँ आपका संदेश।
1: देखिये, मैं ये चाहता हूँ कि चरित्र व्यक्ति का बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है, तो हमें अपने अंदर सब कुछ समाहित करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। और एक और बात है, हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारी भावनाओं का सम्मान हो तो हमें दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा, और वो विनम्रता से, वो आत्म संयम से और सहजता से ही संभव हो पाएगा
0: जी।
1: तो खुद जिए, दूसरों को जीने दें, इस फिलॉसफी पर बहुत यकीन करता हूं
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो आए। दोस्तों, आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
2: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल।

0: हॉस्पिटल की छोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की छोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

ककले हीरो की यहाँ गाते हैं रांझे यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मटती है झूमे बस्ती में।

0: जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और स्टूडियो में आज हमने फिर से आमंत्रित किया है डॉक्टर रितेश चौधरी जी को और आज हम चर्चा करेंगे चरित्र के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है राष्ट्रीय चेतना कार्यक्रम में वहीं पर जब चरित्र की बात की जाती है तो एक इंसान के बहुत सारे पहलू होते हैं, तो समर्पण यानी कि डेडिकेशन और धैर्य किसी इंसान के दो सबसे मजबूत पहलू या गहने हो सकते हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आप इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए बातचीत करने के लिए मुझे बुलाते हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका।
0: सर जब बात चरित्र की जाती है तो पुस्तक के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण सर हमको समर्पण के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं कि अपने कार्य और दायित्वों को पूरी निष्ठा से और पूरी मेहनत से हमको निभाना चाहिए।
1: देखिए बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही बात है। जब तक कि हमने जो दायित्व लिया है, जिस काम को हम कर रहे हैं, उसमें हमारे क्या है कि बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं, परेशानी आ सकती हैं, लेकिन एनी हाउ हमें उस काम को करना ही करना है, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए। तो कठिनाइयों के बावजूद अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, ये दृढ़ता है और दृढ़ता इंसान को सशक्त बनाती है, मजबूत बनाती है। तो चरित्र निर्माण में हमारे लिए दृढ़ संकल्प होना, दृढ़ता के साथ जीना, ये एक उत्तम चरित्र की ओर दर्शाता है। ये नहीं है कि हम मुसीबतों से डर के कहीं भाग गए। आजकल ऐसा होता है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हमने एक काम की शुरुआत की, फिर हमने कहा नहीं नहीं ये काम मुझसे नहीं हो पा रहा, हमने छोड़ दिया। खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें इस बात को समझना होगा कि हमारे जहन में कहीं ना कहीं एक जुनून भी होना चाहिए कि हमें जो काम दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, हमें उसे पूरा करना है। माता पिता की बात का सम्मान करते हुए कि अगर वो ये कह रहे हैं बेटा ये काम करो, तो हमें किन्हीं भी परिस्थितियों में वो काम करना चाहिए।
0: ये दृढ़ निश्चय का या समर्पण का जो भाव है, अगर ये विकसित हो जाएगा या पैदा हो जाएगा, तो उसको अपनी लाइफ के जो सपने हैं, जो उसके ड्रीम्स हैं, उसको सच करने के लिए भी उसको बहुत मदद मिलेगी। और जैसे कि अगला टॉपिक भी हमारा धैर्य है।
1: देखिए बिल्कुल कृष्णा जी, एक बात है, देखिए कहा जाता है कि धीरे धीरे रेपना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब कोई समय आएगा तब उसका फल और परिणाम हमें मिलेगा, लेकिन ये जो कठिन दौर है जब हम मेहनत कर रहे हैं और हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, तो उस कठिन समय में शांत रहना, स्थिर रहना हमारे अंदर धैर्य की भावना को विकसित करता है। कहते भी हैं संतोष परम धर्म, जो है उसके साथ जिए और धैर्य रखें, क्योंकि गम की अंधेरी रात में है ना, न मन को उदास कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। तो हमें सुबह का इंतजार करना है, धैर्य के साथ इंतजार करना है और उस परिस्थितियों में अपने आप का, जो हमने बात की थी ना पिछले एपिसोड में कि हम आत्म संयम रखें, तो आत्म संयम रखना है, अपने संयम को नहीं खोना है, उग्र नहीं होना है, मृदुभाषी रहना है।
0: जी, कभी किसी व्यक्ति का समय भी खराब चल रहा होता है, उसको कई तरह की परेशानियां या पीड़ा चलती है, तब भी धैर्य उसके काम आएगा। और जैसे कि पढ़ने वाले बच्चे जो एग्जाम देते हैं किसी सरकारी नौकरी वगैरह के लिए, तो बार बार फेल होते रहना, वहां पर भी धैर्य जवाब दे जाता है। तो मैं चाहता हूँ इस एक बार उन पढ़ने वाले या एग्जाम देने वाले बच्चों को भी आप थोड़ा बताएं कि ये किस तरह से आपका दृढ़ निश्चय और धैर्य किसी व्यक्ति के सबसे मजबूत पिलर कैसे बन सकते
1: हैं। देखिये जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है परिवार के अंदर, अपने जीवन में, रोजमर्रा में, वो होता है कि हमें पढ़ाई करनी है और हम जिन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं उसका साल के अंत में जब परीक्षा होगी तो हमें उसे पास करना है। तो बच्चों हम ये जो पढ़ाई करते हैं ये धैर्य के साथ करते हैं, क्योंकि परिणाम किसी एक दिन आना है, रोज नहीं आना है। साल में एक लंबा समय है जब हमें मेहनत करनी है, काम करनी है। अगर हमें यह लग जाएगा कि हम साल के अंतिम दिनों में कुछ मेहनत कर लेंगे, हो सकता है ऐसी परिस्थितियों से भी हम कभी परिणाम पा जाएं, लेकिन ये लंबे समय के लिए बहुत एक अच्छी चीज नहीं है। तो हमें मेहनत को धीरे धीरे करना चाहिए। आप सबने बच्चों ने वो कहानियां सुनी होती है ना कि रेगुलर अगर हम किसी चीज को करते हैं तो उसका परिणाम आता ही है। बहुत ही रस्सी जो होती है वो पत्थर को काट देती है ना। धीरे धीरे हमने कुएं की मेड़ पर जो रस्सी रगड़ खाती है वो धीरे धीरे मेड़ को काट देती है, यानी कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता भी कोई काम होगा तो सफलता अर्जित की जा सकती।
0: जी, जी, जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM और ये खास कार्यक्रम है। अगर अभी आपने रेडियो चलाया है, हम चर्चा कर रहे हैं चरित्र के बारे में। चरित्र क्या है? पुस्तक में आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण हमको समझाते हैं कि सदैव सादे जीवन को ही अपनी हमको वरीयता देनी चाहिए। यानी कि जो आजकल हम लोग दूसरों को दिखावे के चक्कर में महंगे फोन, गाड़ी या अच्छे महंगे कपड़े, चाहे हमको वो कर्जा देकर ही खरीदना क्यों ना पड़े, वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है आज के समाज में। तो इसके बारे में थोड़ा सर आप भी प्रकाश डालें।
1: देखिए, जीवन शैली को साधारण होना

0: दा होना और विचारों से उच्च होना, ये एक उच्च जो व्यवस्था है, उच्च जो दर्शन है उसको दर्शाता है। कहते भी हैं कि सादा जीवन उच्च विचार। तो किसी व्यक्ति का अगर जीवन में सादगी है, व्यक्तित्व में सादगी है और उसके विचारों में जो है उच्चता है, तो ये उत्तम चरित्र की ओर संकेत करती है। अगर हम किसी भी तरह की एक बनावटी चीज ले आए अपने अंदर और हम प्रदर्शन करने लगे, अपने चाहे वो प्रदर्शन अपनी भाव भंगिमा से करें, चाहे हम खर्चे बढ़ा के कर लें, मैं किसी को दिखाना चाहता हूं कि मैंने कैसा कपड़ा पहना है, मेरे पास कौन कौन से गैजेट्स हैं, आजकल बच्चों में बहुत शौक है इस बात का कि हम ये डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स लेके चलते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये बाहरी दुनिया में हमारा जो चरित्र तैयार होगा वो एक झूठा और खोखला हो जाएगा। हमें मितवही होना चाहिए, जो हमारे पास संचित किसी भी तरह का कोई भी धन है, चाहे वो एक तरह से आप ही मान लीजिए संस्कारों का, हमें उन्हें रखना चाहिए और एक ऐसी ऐसी परिस्थितियों में उसे हमें खर्च करना चाहिए जहां उसका उपयोग ज्यादा सहज और सरल तरीके से हो, तो शायद हम बेहतर परिणाम ला सकते हैं। क्योंकि अनावश्यकता का व्यय हमें किसी चीज के लिए बेहतर नहीं बना सकता है। अनावश्यक खर्च करके हम शायद अपने परिवार की जरूरतों को कुछ पल के लिए तो पूरा कर सकते हैं, लंबे समय में हमारे लिए वो भी एक परेशानी का सबब है। क्योंकि देखिए चरित्र निर्माण में प्रतिबद्धता भी एक चीज आती है
1: जी।
0: प्रतिबद्धता कि हम अपने परिवार, अपने जीवन, अपने समाज, अपने देश, जो संपूर्ण मानवता के हित है उसके प्रति प्रतिबद्ध रहे। अब अगर हमारे पास कुछ संचित धन है और हम देखते हैं कि समाज में कहीं कोई या परिवार में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे उसकी आवश्यकता है, तो हम समय रहते उसकी मदद कर सकें। क्योंकि समर्पण का भाव, जहां दायित्व, निष्ठा, ये सारी चीजें शामिल आती हैं, चाहे वो समर्पण अपने कार्य के प्रति हो, चाहे वो हमारा समर्पण संस्थागत हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, लेकिन समर्पण होना, प्रतिबद्ध होना, ये सारी चीजें भी संस्कार का हिस्सा है। और ये सब हो सकती है तब जब हम मितवही बनेंगे
1: जी।
0: मैं ये चाहता हूँ बच्चों कि आप खूब सारा अपनी दादी के यहाँ, नानी के यहाँ कहीं जाते हैं तो जो दादी नानी आपको जाते वक्त 50-100 रुपए देते हैं, एक छोटी सी गुल्लक ले लीजिए मिट्टी की और उस गुल्लक में जोड़ना शुरू करिए। और जिस दिन जब गुल्लक भर के बड़ी हो जाएगी, तब अपने लिए किसी तरह की एक अच्छी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, चाहे माता पिता के सहयोग के लिए, उस गुल्लक को तोड़िए और उन रुपयों का इस्तेमाल करिए, मितवही बनिए और जरूरत के समय सही ढंग से पैसे का इस्तेमाल कीजिए
1: जी। दोस्तों आप भी इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा और कार्यक्रम में जुड़े रहिए, सुनते रहिए सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद।

मौसम नया बनाएंगे। मौत परोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे, अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: एरी नाक नकीली हो फटे तू
2: ये
1: तू
2: तू, तू।

चिट्ठी कली में लेखक महोदय ने बहुत विशेष बात कही कि इन गावणियों के साथ इनकी घराली कैसे रहती।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के।

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ। जय हिंद।

0: जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ जय हिंद।
1: पाई पे शर्मी सागी सारे के यो बगड़िया।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा।

जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ जय।

0: और प्रिय श्रोताओं, उस तस्वीर को लेकर राजा मदन सेन राजमहल में पहुंच जाता है। दो चार दिन हो गए रहते सहते, ने राज दरबार में जावे, ने ठीक ढंग से रानी से बात करे, निराश से रहा नजर आए। रानी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि महाराज, क्या बात है, आप निराश क्यों हैं? न नहाते न खाते क्या कारण है? श्रोताओं, एक ही रटन लगाए हुए कि हाय फोटुवाड़ी, हाय फोटुवाड़ी, ये आवाज कानों में पड़ी। रानी नाग देख के समझदार थी, जचगी कि तेरे पति का किसी औरत की खटक लागी और उसके वियोग में पागल हो चुका है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि महाराज, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकती, न मेरा कोई दायरा, लेकिन इन औरतों के चक्कर में आकर किन किन ऋषियों की मति भंग हुई। एक बात के द्वारा रानी नागदेव अपने पति राजा मदन सेन को क्या सुझाव देती है भला?
1: न बलि हो और ड

मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो महापुरुष अपने आप को इस संसार में महान समझते थे, उनके साथ भी औरतों का क्या व्यवहार रहा, पहली कली में क्या

हे महाराज, आप एक राजा हो। राजा को एक एक कदम भूख भूख रखना चाहिए। आपके प्रजा के प्रति आपका कैसा स्नेह रहना चाहिए। आखिरी कली में किस

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड।

0: किठोर अत्याधुनिक नर्सरी ECG इको कार्डियोग्राफी सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स, लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में। आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तपकर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान,
1: मेरे देश की धरती।
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु

0: जमीन सूखी हो तो किसान रोता नहीं, मेहनत के पसीने से खेतों को सींचता है। बीज जब धरती में गिरता है तो उससे सिर्फ अनाज नहीं, भारत का भविष्य उगता है। अब वक्त है किसान की ताकत को, उसकी असली आवाज को सुनने का। सुनिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर खेती किसानी का कार्यक्रम जय जवान जय किसान, जहां मिलेगी खेती की नई तरकीबें, सही दाम और संघर्षों से जीतने की कहानियां। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ जय हिंद। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम राष्ट्र प्रथम।

0: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA Honors Hindi, BA Honors English, MA Hindi, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है।

0: बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: जय हिंद, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आप सभी का सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर स्वागत है। बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे सुबह आरती परिवार के संस्थापक महोदय परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण सर आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ।
1: जय हिंद वास्तु कृष्णा। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आजाद हिंद रेडियो के बहुत ही सुंदर से स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया है।

0: तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि जब आप ज्ञान की बातें करते हैं ना कई बार, तो ज्ञान की बातें कई इतनी ज्यादा रूखी होती हैं कि लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह ग्रहण नहीं करते। तो कई बार जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो हम जानते हैं इस बात को, कभी कभी ऐसी दवा पिलाई जाती है जो छोटे बच्चे होते हैं
1: जी,
0: नादान बच्चे होते हैं
1: जी,
0: उनको जब दवा पिलाई जाती है तो कई बार हम उसमें शहद मिला देते हैं
1: जी,
0: तो शहद मिला के पिलाते हैं तो दवा भी ग्रहण हो जाती है और बच्चे को आनंद भी आता है
1: जी।

0: जय हिंद, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आप सभी का सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर स्वागत है। डॉक्टर अतुल कृष्ण सर आज हमारे बीच मौजूद हैं।
1: जैसे कि आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनको कि हमारे शुभार्थी के दृष्टिकोण से हम उनको एक महापुरुष के साथ साथ युग पुरुष कहते हैं
0: जी।
1: और वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने भारत को वो सब दिया जो कोई भी आसानी से कल्पना नहीं कर सकता कि एक आदमी इतना सब कुछ क्या किसी देश को दे सकता है
0: जी।
1: लेकिन कभी कभी देख के और जान के दुख होता है कि जो बाबा साहब को बहुत अच्छा मानते हैं या कुछ लोग न्यूट्रल हैं, कुछ लोग नहीं मानते, उन बाबा की सच्चाई नहीं जानते
0: जी।
1: तो बाबा को केवल दो दृष्टिकोण से पहचाना जाता है हमारे देश के अंदर, एक तो संविधान निर्माता और दूसरा कि दलित उद्धारक
0: जी।
1: लेकिन जब हम देखते हैं कि बाबा साहब का हम जो पूरा कृतित्व देखते हैं
0: जी,
1: तो हम देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो बाबा से अछूता रहा है, जिसमें बाबा का योगदान नहीं है
0: जी।
1: जैसे आप महिलाओं को ले लीजिए, महिलाओं को समानता दिलाने का, उनका न्यायिक हक दिलाने का
0: जी,
1: हर दृष्टिकोण से, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे समाज में कोई और अधिकार है, तो उनको समान रूप से समाज में ऊपर उठाने का काम बाबा साहब ने किया
0: जी।
1: और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जो प्रसूति अवकाश है ना
0: जी,
1: ये भी बाबा साहब की ही देन है। ये बाबा साहब ने जब ये वायसराय के एक परामर्शदाता थे
0: जी
1: अंग्रेजों के टाइम में, तब उन्होंने उनके कहने पर वायसराय ने प्रसूति अवकाश की घोषणा की थी। तो ये कंट्रीब्यूशन लोग नहीं जानते। इसी तरीके से आप देखें कि जो हमारे श्रमिक वर्ग है
0: जी सर,
1: श्रमिक वर्ग को पहले 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, ये जितना मालिक का मन होता था वो उतना उससे काम कराता था, और जो चाहता था वो उसको वेतन देता था
0: जी,
1: और उसको बोलने का अधिकार नहीं था
0: जी।
1: तो श्रमिकों के लिए बाबा साहब ने कि 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी उनसे नहीं ली जा सकती उनकी मर्जी के विरुद्ध
0: जी सर,
1: और ऐसे ही प्रति सप्ताह उनको एक अवकाश दिया जाना जरूरी है
0: जी,
1: ये बाबा साहब की देन है। इसके अतिरिक्त उनको इस बात का अधिकार उन्होंने दिया कि आप संगठित होकर यूनियन बनाकर अपनी आवाज को उठा सकते हैं
0: जी।
1: तो ये श्रमिकों के लिए उनका योगदान था। अब आप इसके अलावा देखिए कि जो हमारे जल प्रबंधन नीति
0: जी,
1: उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। कई बार ये देखा गया ना कि जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में कहीं तो सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, और कहीं बाढ़ आ रही है
0: जी,
1: तो विभिन्न नदियों को जोड़कर और जहां पर सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर पानी पहुंचाया जाए, तो इस तरह के अटल जी को इसका क्रेडिट दिया जाता है। बिल्कुल, अटल जी ने योजना बनाई थी, वो कार्य रूप अभी तक नहीं ले हो पाया, लेकिन हाँ उस पर काम चल रहा है
0: जी।
1: तो वर्तमान सरकारों का जितना योगदान है, तो आप बाबा साहब का देखिए, उस समय बाबा साहब ने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया था
0: जी।
1: और कैसे एक नदी जो जा रही है विभिन्न प्रदेशों से निकलकर, तो उनमें कैसे पानी का बंटवारा हो
0: जी,
1: तो ये जल प्रबंधन का उन्होंने पूरा दिया। फिर एक और चीज जो बाबा साहब के बारे में लोगों को नहीं पता कि खेती

0: मजदूरों के लिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। उनका विचार था कि हमारे कोऑपरेटिव फार्मिंग हो
1: जी।
0: कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब कि अभी तक क्या है ना कि आप जो गांव के में जाके देखें उस अब कम हो गया, लेकिन पहले तो बहुत था कि सारी जो जमीनें होती थी वो बड़े बड़े जमींदारों के पास होती थी
1: जी।
0: आज भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत ही ज्यादा था। सब जमींदारी जो चलती थी उसमें जितना भी श्रमिक था वो उसमें काम करता था, तो श्रमिक उसका उसको लाभ कुछ नहीं मिलता था, जो उसको मेहनताना मिल गया तो मिल गया,
1: बस मजदूरी जो मिल गई वो मिल गई,
0: मजदूरी जो मिल गई
1: जी सर।
0: तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई सारे देश के अंदर जो खेती है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए, और उसमें जो मजदूर है उसको मजदूरी के अलावा जो वहां से लाभ होता है उसका भी एक भाग मिलना चाहिए। तो बाबा साहब कोऑपरेटिव फार्मिंग के बहुत बड़े उनका चाहते थे, वो नहीं हो पाया लोगों ने, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इस बात का संदेश दिया। तो उससे दूसरा लाभ क्या होता है कि देखिए अभी हम जब छोटे छोटे खेत होते हैं
1: जी,
0: तो हम उसमें अच्छी फसल नहीं उगा सकते, अब बड़े बड़े उपकरण हम लोग यूज नहीं कर पाते
1: जी।
0: लेकिन जब कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी तो जो छोटा खेत है वो बहुत बड़ा खेत हो जाएगा, और उसके अंदर जितनी मशीनरी है उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो अधिक फसल उपजा सकते हैं और श्रमिकों को सम्मान और उसमें से उनका उसका भागीदारी भी मिले। तो ये बाबा साहब का श्रमिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान था।
1: सर आम जनमानस को ये सारे योगदान के बारे उतनी नॉलेज नहीं है आज भी,
0: नहीं है। औद्योगिकीकरण आप देखिए, जहाँ एक और हम ये विरोधाभास देखते हैं, जहाँ एक और हमारे गांधी जी ये थे कि भाई कुटीर उद्योग ही होने चाहिए और हथकरघा और खादी के ऊपर जोर था उनका
1: जी।
0: बाबा साहब ने कहा कि देखिए क्या है कि हमारे यहाँ से जो कच्चा माल बाहर ले जाते हैं अंग्रेज लोग, वो हम पे गुलाम कैसे बने हम, वो हमारी जो आर्थिक शोषण हुआ वो उसका आप जड़ में जाइए, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ से देश में से कच्चा माल ये अंग्रेज ले जाते थे
1: जी।
0: और उसी कच्चे माल को अपने उद्योगों में उसका अंतिम उसका प्रोडक्ट बनाकर वो बहुत ही महंगे दामों पर हम ही भारतीयों को बेचते थे। तो बाबा साहब इस बात के बहुत बड़े पक्षधर थे कि हमारे यहाँ औद्योगिकरण होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे क्योंकि उसके बिना उन्होंने कहा देश प्रगति नहीं करेगा। ये बात आप देखिए। फिर जब हम बाबा साहब के इसके बारे में देखते हैं तो कितना बड़ा योगदान, आज हम देश हमारा एक है
1: जी।
0: क्यों एक है? क्योंकि यहाँ पर सनातन अभी भी मजबूत है
1: जी।
0: जिस दिन सनातन टूट जाएगा उस दिन ही देश टूट जाएगा। तो बाबा साहब का एक सनातन के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और जब बाबा साहब ने 1935 में घोषणा कर दी थी कि भाई मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं
1: जी।
0: अगर उनका सनातन के प्रति, जो मैं कहता हूँ ना सनातन, हिंदू केवल सनातन अपने आप को सनातन का ऐसा नहीं है, हिंदू तो सनातनी है ही, लेकिन जितने भी भारतीय मत हैं जैन सिख बौद्ध ये सब सनातनी है
1: जी सर।
0: इसमें पूजा पद्धति किसी की कुछ हो सकती है, मान्यता कुछ हो सकती है, लेकिन हम सब सनातनी है
1: जी।
0: तो बाबा साहब अगर सनातन से विमुख होते तो उनको कौन रोक रहा था? 1935 में वो धर्म बदल सकते थे
1: जी।
0: और जब ये घोषणा उन्होंने कर दी तो उसके बाद उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े उनके पास ऑफर आए
1: जी।
0: क्रिश्चियंस ने कहा कि भाई हम आपको पूरा का पूरा एक आइलैंड देने को तैयार हैं और आप ईसाई बन जाइए। उधर से हैदराबाद निजाम ने तो चेक बुक लेके चेक उनका, क्योंकि ये मैं बता दूं आपको, दुनिया का उस सबसे अमीर आदमी हैदराबाद का निजाम था।
1: अच्छा।
0: उसने चेक ब्लैंक चेक उसने लिख दिया और एक नंबर लिख के बाद उसने बाबा साहब से कहा कि आप जितने जीरो लगा सकते हो उतने जीरो लगा लो।
1: अच्छा।
0: और आप मुसलमान बन जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन मैं सनातन छोड़ दूंगा उस दिन ये देश टूट जाएगा। और सही बात भी थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हमारे देश से हमारे समाज से जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो, पर अंत में जब उन्होंने देखा कि हमारे समाज में कोई विशेष प्रभाव पड़ नहीं रहा है तो 1956 में उन्होंने अपनी मृत्यु से केवल लगभग 1.5 माह पहले
1: जी
0: उन्होंने सनातनी बौद्ध मत स्वीकार किया।
1: अच्छा।
0: और लाखों लोगों ने उनके साथ बौद्ध मत स्वीकार किया
1: जी।
0: तो कितनी बड़ी धर्म रक्षा हुई, सनातन की धर्म की रक्षा हुई बाबा साहब के द्वारा, ये हमें समझना चाहिए
1: जी सर।
0: फिर आप आज जो हमारा रिजर्व बैंक है
1: जी,
0: रिजर्व बैंक को आप जानते हैं कि ये इसकी जो कॉन्सेप्ट था रिजर्व बैंक का, ये आया कहाँ से
1: जी?
0: ये बाबा साहब ने जब शोध अपना किया
1: जी,
0: पीएचडी करी जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स था
1: जी,
0: उससे उनके शोध पत्र था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये बाबा साहब का शोध पत्र था, इसके आधार पे रिजर्व बैंक की संरचना हुई स्थापित हुआ वो
1: जी।
0: हम लोगों को बता रहे हैं कि आप इनके प्रति विमुख ना, तो उनके ये सारे जो योगदान जब लोगों को पता चल रहे हैं, तो जिसको भी पता चल रहा है

0: वो कई लोग तो मेरे पास आए
1: जी
0: कि आपने तो हमारी अवधारणा बिल्कुल ही पूरी तरह बाबा साहब के बारे में परिवर्तित कर दी। हम तो केवल ये सोचते थे कि बाबा साहब गांधी जी के विरोधी थे और वो देश के भी बहुत ज्यादा जो आजादी के रूप में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि हम गलत थे
1: जी।
0: तो ये जो लोगों की बाबा साहब के बारे में अवधारणा थी वो हमने काफी चेंज करी है। अब जितने भी लोग आए उन्होंने देखा
1: जी।
0: एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो लोग नहीं जानते कि जब देश का बंटवारा हुआ तो देश के बंटवारे के समय केवल बाबा साहब एक ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरीके से धर्म के आधार पर देश के विभाजन का विरोध किया।
1: अच्छा।
0: उन्होंने कहा ये धर्म के आधार पर कैसा विभाजन होगा कि जिसमें अधिकांश मुस्लिम वर्ग के लोग जो हैं वो तो भारत में ही रह जाएंगे। तो जो ये कहना कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते ये तो बात ही गलत है, क्योंकि पाकिस्तान जो जा रहे हैं आप ठीक है राजनीतिक दृष्टिकोण से जिन्ना साहब हल्ला मचा रहे हैं आप उनके लिए दे रहे हैं, लेकिन आप ये कह के भारत का डिवीजन कर रहे हैं कि सब हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते
1: जी,
0: तो इस आधार पर भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, इसके बड़े प्रबल रूप से वो विरोधी थे। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए बात सच मान भी ली जाए जो कि है नहीं सकते कि हम हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते
1: जी,
0: क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मैं आपको बताना चाहता हूँ जो उसको मैं भी बिलीव करता हूँ, बाबा साहब भी कहते थे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारे समाज में जो हिंदू और मुस्लिम दो वर्ग हैं ये एक शरीर है तो एक आत्मा है, और अगर शरीर में से आप आत्मा निकाल दीजिए तो क्या होगा, शरीर किसी काम का है
1: नहीं सर,
0: और अगर आत्मा को शरीर ना मिले तो आत्मा भटकती रहती है
1: जी,
0: है ना, उसको तो भूत कहते हैं
1: जी सर, जी सर।
0: तो आप भूत बन के रह जाएंगे
1: जी।
0: तो जो विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे शरीर में शरीर भौतिक शरीर और आत्मा दोनों होनी चाहिए, इसीलिए देश के विकास के लिए जरूरी है कि हिंदू और मुसलमान साथ रहें, और यही बाबा साहब का मत था, इसीलिए बाबा साहब विरोध करते थे। उनका दृष्टिकोण लोगों को नहीं पता, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई ठीक है अगर मैं मान लूं जो कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन कल्पना करिए कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते तो जितने यहाँ पर मुसलमान रह जाएंगे भाई
1: जी।
0: तो वो क्या करेंगे, उनको भी चले जाना चाहिए
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: तो ये जो इतना मुखर होकर स्पष्ट रूप से कहने वाला अगर कोई था तो केवल बाबा साहब थे, उन्होंने केवल कहा नहीं उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है
1: जी।
0: तो देश के कितने बड़े वो विचारक थे, और आप सोचिए अगर उनकी इस बात को मान लिया गया होता उस समय, अगर बाबा साहब की बात मानी गई होती और देश का बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज हमारी जो कितनी सारी समस्याएं हैं वो हमारे नहीं होती
1: जी।
0: तो इसलिए इस मेले में हमने जहां लोगों को मनोरंजन के साधन दिए उनको आकर्षण दिए तो हमने बाबा के बारे में भी उनको पूरी जानकारी दी, उसका बड़ा लाभ हो रहा है
1: जी।
0: समाज को एकजुट करना है। दूसरा ऐसे ही बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बहुत भ्रम है
1: जी।

0: भगवान बुद्ध के बारे में भ्रम है। भगवान बुद्ध के लिए कहते हैं कि भाई वो अपनी पत्नी को और अपने बेटे को राहुल को और यशोधरा को सोता हुआ छोड़ के चले गए, बिल्कुल गलत है ये।
1: अच्छा
0: हाँ, सच्चाई ये है कि उनका पहले से योजना थी, वो बाकायदा योजना के अनुसार उन्होंने निष्क्रमण किया था और वो अपना घर छोड़कर संन्यास उन्होंने लिया था। इस बात की पूरी जानकारी यशोधरा जी को थी
1: जी,
0: और उनकी सहमति थी, और जाते समय यशोधरा जी मिली थी उनको, और यशोधरा जी ने उनसे कहा था कि आप जा तो रहे हो लेकिन आप केवल अपने उद्धार की बात में सोचना। आप सोचना तो पूरे समाज के लिए आप ऐसा रास्ता खोजो जिससे पूरा समाज लाभान्वित। अब कितने ये भ्रम है लोगों में कि अब वो छोड़ के चले गए सोते में, तो ये सब भगवान बुद्ध के बारे में हमने यहाँ पर लोगों को जानकारी दी।

0: और बौद्ध मत के बारे में भी कि बौद्ध मत किस रूप में एक पूरी तरह से आप देखिए वैज्ञानिक धर्म है ना, जो लौकिक व्यवहार के ऊपर आधारित है। सनातन है, सनातन का अर्थ है जो सदैव से था और जो सदैव रहेगा। तो कोई भी पूजा पद्धति तो सनातन नहीं हो सकती, कोई पूजा पद्धति सदैव से नहीं थी, ये तो चेंज होती रहती है। पहले हवन होते थे, यज्ञ होते थे, उसमें बलि दी जाती थी, फिर मूर्ति पूजा होने लगी, फिर ध्यान किया जाने लगा। जो हमारे विभिन्न समय समय पर संत आए, उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देख के लोगों के दोषों को दूर करके पूजा पद्धति में परिवर्तन किए। तो सनातन का जो मूल भाव है वो है हमारा लौकिक व्यवहार
1: जी।
0: अगर हम लौकिक व्यवहार में देखें, हमारे में प्रेम करुणा मैत्री समानता और समन्वय के भाव है, तो वो सनातन है
1: जी।
0: और हमारे भारतीय मत तो कम से कम जितने भी हैं सब सनातनियों को ये भाव समन्वय सबसे महत्वपूर्ण इसमें समन्वय। मैं तो कहता हूँ कि अगर मुस्लिम और ईसाई और यहूदी पारसी ये लोग भी समन्वय का भाव रखते हैं तो ये भी सनातनी है
1: जी।
0: समन्वय का अर्थ क्या है? समन्वय का अर्थ यह है कि मैं अपनी मान्यता में विश्वास रखता हूँ, मैं उसको मानूंगा, लेकिन मैं आपकी मान्यता का भी सम्मान करता हूँ
1: जी।
0: मैं विश्वास उसमें नहीं करता हूँ, वो बात अलग है, लेकिन सम्मान करता हूँ
1: मैं,
0: है ना। ये समन्वय
1: जी,
0: मैं आपकी बात आप अपने स्वीकार करिए, मैं अपनी बात स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी बात आप पे नहीं थोपूंगा, आप अपनी बात मेरे पे मत थोपिए। तो ये समन्वय है, ये हमारे सारे भारतीय मतों में
1: ये दो धारणाएं बिल्कुल टूटी हैं सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में और भगवान बुद्ध के बारे में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आम धारणा ये है कि बुद्ध तो सोते हुए बच्चों को अपने छोड़कर चले गए थे। आपकी बात सुनकर जरूर ये जागरूकता आएगी।

0: जब मैं आपको देखता हूँ, हालांकि पहले भी जब मेरी आपसे इस बारे में बात हुई कि इस उम्र में भी आप इतनी मेहनत कैसे कर पाते, मैंने आपकी जीवनी का पहला हिस्सा पढ़ा, समझ में आया कि आपका पालन पोषण किस तरह से हुआ, आप जो एक व्यक्तित्व है वो किस तरह से आपने खुद की पर्सनैलिटी को भी बनाया, और करियर के शुरुआती दौर की भी बात हम करेंगे, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर रोड पर जो एक छोटा सा क्लिनिक पहले आपने बनाया, तो मेरे गांव से मैं एक ऑटो में बैठकर सफर किया करता था मेरठ आने के लिए। तो एक बार मैं ऑटो में पीछे बैठा था, दो बुजुर्ग दंपत्ति थे, वो बहुत बुजुर्ग थे, तो एक की आंखों पर काले चश्मे चढ़े थे। मैं नहीं जानता था सुभारती अस्पताल के बारे में, तो वो ऑटो में बैठकर क्या बातें हो रही हैं सर, वो बुजुर्ग दंपत्ति जो बूढ़ी अम्मा थी वो कह रही है कि मेरी आंखें बनाने के लिए जा रहे हैं सुभारती, तो जो बाकी सवारियां बैठी थी वो कह रही हाँ हाँ सुभारती बहुत ही सस्ते में हो जाता, बहुत बढ़िया है। उनके पास पैसे नहीं थे सर, यहां से 50-60 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर बैठा कोई गरीब आदमी अगर ये सोच पाता है, कोई बुजुर्ग ये सोचता है कि चलो सुभारती चलते हैं और वहां जाकर मेरी आंखों का इलाज हो जाएगा या कोई और इलाज हो जाएगा, तो ये एक अमूल्य योगदान है सर आपका सुभारती अस्पताल के द्वारा, क्योंकि बहुत से लोगों के पास आज भी अच्छा महंगा इलाज अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते हैं। तो मैं आवाम की तरफ से सभी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा अस्पताल दिया। अभी दो दिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज भी फ्री होता है सर हमारे अस्पताल में, क्या कहेंगे सर?
1: हाँ वासु कृष्णा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी
0: जी सर,
1: तो मेरे पिताजी डॉक्टर कृष्ण कुमार भटनागर थे
0: जी,
1: और उन्होंने मेरे से एक वादा लिया था।
0: अच्छा,
1: क्योंकि भाई आप पुराने आज के जमाने की बात अपनी जगह, लेकिन पुराने हमारे समय में हम लोग जो भी काम करते थे अपने माता पिता से अनुमति लेके आशीर्वाद लेकर ही करते थे
0: जी।
1: तो हमने उनसे आशीर्वाद मांगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक दशा लगा दी थी आशीर्वाद देते समय।
0: अच्छा,
1: उन्होंने ये दशा लगाई थी कि तुम्हें मैं आशीर्वाद तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये तुम मुझे वचन दो कि तुम्हारी क्लिनिक से कभी कोई जना इसलिए वापस नहीं होगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है
0: जी।
1: तो मैंने उनको ये वचन दिया था, तो मैं अपने उस वचन का मैंने पालन किया। पहले मैंने अपनी प्राइवेट निजी क्लिनिक खोली, निजी अस्पताल खोले, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आकर मेरे से कहा हो कि मेरे पास पैसे नहीं है या पैसे कम है और मेरा इलाज आप कर दीजिए, और मैंने उसको मना किया। हमारे यहाँ वही परंपरा आज भी चली आ रही है। आज बड़े बड़े अस्पताल हो गए ऊपर वाले की कृपा से, मेरे प्रभु कृपा है, तो यहाँ आज भी वही नियम है सुभारती में कि आपके पास पैसे हो ना हो इसका कोई मतलब ही नहीं। मोतियाबिंद तो निःशुल्क होता ही है, डिलीवरी माताओं की निःशुल्क होती है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में एक परंपरा रही है कि भाई घर में डिलीवरी हो जाती है तो उससे बड़े नुकसान होते हैं, तो उनकी अच्छा जो घर में डिलीवरी होती है उसका क्या कारण है, उसका मुख्य कारण गरीबी है। तो ठीक है, कुछ बड़े बड़े परिवार के घरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पर बड़े घराने हैं, बड़े परिवार हैं, तो अपने घर के अंदर ही अस्पताल सही बना देते हैं, तो वो तो हम नहीं कह सकते कि घर की डिलीवरी है, लेकिन जो गरीब महिलाओं के डिलीवरी घर में हो जाती है क्योंकि वो डरती हैं कि अस्पताल जाएंगे पता नहीं कितना पैसा लग जाएगा, तो ये सब हमारे निशुल्क होता है, हम उसको निशुल्क देते हैं। और जो अगर हमारे यहाँ उस निशुल्क डिलीवरी के बाद भी अगर कोई बच्ची पैदा हो जाती है तो सम्मान पूर्वक उस माँ को 1,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाता है।
0: अच्छा।
1: और उस बच्ची को उसका इंश्योरेंस दिया जाता है कि वो
0: अस्पताल की तरफ से
1: कि इसको अगले 5 साल तक किसी भी प्रकार का कोई उससे चार्ज नहीं किया जाएगा, उसको रेगुलरली बच्चे को दिखाते रहें, टीका लगवाते रहें।
0: अच्छा,
1: तो ये हम लोग करते हैं।
0: ये तो सर हमें भी नहीं पता था।
1: हाँ।
0: तो अगर कोई भी डिलीवरी यहाँ पर होती है
1: हाँ।
0: और बेटी पैदा होती है
1: हाँ।
0: तो अस्पताल उसको इनाम के बतौर माँ को पैसे
1: हाँ।
0: भी देते हैं
1: हाँ।
0: और अगले कुछ समय तक इलाज भी 5 साल
1: 5 साल तक बच्चे का, क्योंकि ये पीरियड होता है ना जिसमें बच्चे को वैक्सीनेशन वगैरह लगना जरूरी है। 5 साल के बाद बच्चे में रोग की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी तरह हो जाती है, फिर तो आवश्यकता नहीं पड़ती
0: जी,
1: लेकिन 5 साल तक उसको रेगुलर टीका लगवाना जरूरी है
0: जी।
1: वही जो गरीब आदमी है ग्रामीण क्षेत्र का है वो कई बार टीके नहीं लगवाता
0: जी।
1: दोनों ही कारण होते हैं, एक तो ये कारण होता है कि उसको अनजान है वो
0: जी,
1: और दूसरा ये भी कारण होता है उसको डर लगता है कि अस्पताल में जाएंगे तो पैसे मांगे जाएंगे
0: जी।
1: तो बावजूद इसके कि सरकार की तरफ से भी सुविधाएं निःशुल्क हैं, लेकिन लोग सरकारी अस्पताल में इतनी भीड़ भाड़ होती है कि वहां पर जाते वैसे ही डरते हैं। उस भारती की तरफ से हम उनको बाकायदा कहते हैं कि आप बच्चे को पूरे सब उसका टीका वगैरह लगवाइए, दिखाते रहिए कि कोई कमी हो, 5 साल तक सब कुछ पूरी तरह निःशुल्क होता है।
0: क्या बात है।
1: और जो भी ये तो मैंने कुछ बता दिया आपको, लेकिन कोई सा भी रोग हो
0: जी,
1: हमारी परंपरा यह है सुभारती की, जो मैंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि कोई भी व्यक्ति हमारे अस्पताल से सुभारती अस्पताल से, चाहे वो सुभारती अस्पताल मेरठ का हो, चाहे सुभारती अस्पताल हमारे देहरादून में भी एक अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, चक्राता रोड पे झाजरा ग्राम में
0: जी।
1: तो हमारे स्वार्थी के अस्पतालों में ये परंपरा है, ये नियम है कि किसी भी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होंगे तो भी उसको लौटाया नहीं जाएगा, जो उसकी सामर्थ्य हो वो करे, नहीं तो बाकी हमें।
0: इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि न सिर्फ आपका नाम अतुल है, आप अतुलनीय योगदान कर ही रहे हैं सर। तो हमारे श्रोताओं को और देखने वालों को भी ये पता चल ही गया आपके माध्यम से कि अगर यहाँ पर डिलीवरी होती है तब भी हर तरह से हर संभव प्रयास किया जाता है मदद करने के लिए।

0: सर अब बात करते हैं आज के समय की। आपने कामयाबी हासिल की अपने जीवन में और मेरे ख्याल से जो भी ख्वाब जो भी सपने आपके बचपन में या युवा पीढ़ी में रहे होंगे आपके सभी पूरे हो गए होंगे, तो क्या अभी कोई और सपना कोई ख्वाब आपका बचता है सर?
1: देखिए जब तक जीवन है तो सपने तो देखने ही है
0: जी।
1: और देखने हैं, लेकिन ये सोते के सपने नहीं है
0: जी।
1: जो मैं सपने देखता हूँ जागते में देखता हूँ
0: जी सर।
1: तो देखिए मेरा अब मैं आपने बिल्कुल कहा कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से जब मैं इसका कभी देखता हूँ इसको नजर इस पर डालता हूँ तो मुझे अब नहीं लगता कि मुझे और किसी चीज की आवश्यकता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही सामान्य घर से निकला। मेरे पिताजी शिक्षक थे, जैसे आपने पढ़ाई उसमें
0: जी।
1: और कोई घर में संपत्ति वगैरह किसी तरह का नहीं था। क्लिनिक भी मैंने जो आरंभ में ली थी वो एक 84 नर्सिंग होम में शिफ्ट करी थी कि भाई मैं उनके रोगियों को निशुल्क देखूंगा, तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए चैम्बर दे दिया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कोई किराए पे भी क्लिनिक ले सकूं। अपनी क्लिनिक होने की तो बात ही छोड़ दीजिए
0: जी,
1: पर क्लिनिक लेने के लिए किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने इस शर्त के ऊपर 84 नर्सिंग होम में चैम्बर लिया था
0: जी।
1: और आज मेरे पे कोई कमी नहीं है। देखिए मेरठ में पूरा विश्वविद्यालय है, लोकप्रिय अस्पताल है, मेरी बहुत बड़ी 200 गायों की गौशाला है, एक अस्पताल किठौर में है, ऐसे बिजनौर में मेरे इंस्टीट्यूशंस हैं और देहरादून में पूरा मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि जितनी भी सोच थी उससे मैंने अधिक प्रभु कृपा से मैंने स्थापित कर दिया
0: जी।
1: मैंने ये भी स्थापित कर दिया कि आदमी अगर सच्चाई से चलता है, ईमानदारी से चलता है, तो उसके आरंभ करने के लिए भी पैसा होना जरूरी नहीं है। बिना पैसा हुए भी आप सही रास्ता पकड़ेंगे तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, आर्थिक रूप से भी कमा सकते हैं और सामाजिक रूप से भी कमा सकते हैं। तो ये भी मैंने अपने जो युवा पीढ़ी है उसको जब ये मेरी किताब पढ़ेगा, मेरी जीवनी पढ़ेगा, ये सब देखेगा, तो इस बात को उसको समझ आ जाएगा। तो वहां उस दृष्टिकोण से तो मुझे अब और आगे करने की इच्छा नहीं है। और जैसे मैं, आप जानते हैं कि मैं बौद्ध मत को मानने वाला हूँ
0: जी,
1: तो तथागत ने भी कहा है कि भाई तृष्णा नहीं होनी चाहिए, इच्छा तो होनी चाहिए लेकिन तृष्णा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी कोई तृष्णा नहीं है कि मुझे अब और नई कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, नया मेडिकल कॉलेज बनाना है या नया अस्पताल बनाना है, ऐसी मेरी कोई तृष्णा नहीं है
0: जी।
1: ये सब काम मैंने अपने बच्चों को धीरे धीरे मैंने दे भी दिए हैं और धीरे धीरे जो रह गए वो मैं दे रहा हूँ
0: जी।
1: अब जो मेरा जो सपना है वो सपना ये है कि हमारा जो भारत है वो बौद्धमय हो
0: जी।
1: यहाँ मैं बौद्धमय हो जाने का जो है स्पष्ट कर दूं, बौद्धमय का मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग जो हैं वो अपने अपने मतों को छोड़कर और बौद्ध मतावलंबी हो जाएं
0: जी।
1: जब हम बौद्धमय कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे देश में प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय का भाव प्रवाहित हो
0: जी
1: सबके मन में। आप पूजा पद्धति कुछ भी रखें लेकिन आप में एक दूसरे में समानता होनी चाहिए। आप जो जातियां हैं इनका उन्मूलन होना बहुत जरूरी है। जब तक ये जातियां रहेंगी, जब तक ये वर्ण रहेगा, तब तक लोग आपस में मिल नहीं सकते। हम जो भी समानता की सद्भावना की बात करते हैं तो वो सब बेमानी है। तो एक मेरा उद्देश्य ये है कि सही रूप में भारत बौद्ध में हो और जो हमारा लौकिक व्यवहार है वो तथागत बुद्ध के सिद्धांतों का, पंचशील का आधार लेकर वो स्थापित हो
0: जी।
1: और जो हमारे सनातन के जो परिभाषा है उसको लोग सही रूप में समझें कि जो ये लौकिक व्यवहार से संबंधित जो हमारी सोच है
0: जी,
1: जिसको वो सोच सही लगती है, जो उसको सही भी लगती है और अपने जीवन में पालन करता है, वो सनातनी है
0: जी।
1: तो ये मेरा है कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, लिंगायती, रविदासी, रामदासी और भी जितने भी ये इस तरह के मत हैं, हम सब सनातनी हैं और सनातन हमारा एक हो
0: जी।
1: और उसका कारण क्या? कारण सबसे बड़ा तो यही है कि भाई हम लोगों को इंसानियत के रूप में रहना है, साथ में ये कि अगर हमें देश को एक रखना है, देश में हमें डेमोक्रेसी को बचाना, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमको जनतंत्र दिया
0: जी,
1: तो सनातन का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। कल को आप सोचिए कि अगर दूसरे मतों का यहाँ पर बोलबाला हो गया और उनके नियम चलने लगे तो सबसे पहले जो कुठाराघात होगा हमारे संविधान पे होगा और हमारे जनतंत्र पे होगा। एक तो मेरा सपना ये है और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मेरा सपना है जो दोनों इंटरलिंक्ड हैं
0: जी।
1: ये कब होगा? ये कब तब होगा कि जब हमारे में कोई राष्ट्रीय चरित्र होगा। अभी तक तो हमारे में राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। हमारा जो हम केवल जो हमारी सोच है तो अपने तक है, अपने से निकलते हैं तो अपने परिवार, अपने परिवार से निकलते हैं तो अपनी जाति या अपने धर्म
0: जी,
1: उन तक हमारी सोच जाती है, देश तक तो पहुंच ही नहीं पाती। तो हमारा प्रयास ये है कि युवा वर्ग में बड़ों में भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो युवा वर्ग के लिए कर रहे हैं कि युवा वर्ग हमारा समझे, जो 9th क्लास के ऊपर के बच्चे हैं विशेष रूप से, उनमें हम ये भाव उनके विद्यालयों में जा रहे हैं, वहां पर अपना उद्बोधन दे रहे हैं कि पहले चरित्र समझो और उसके बाद राष्ट्रीय चरित्र समझो। तो ये हम लोग राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की योजना हम लोगों ने रचना के नाम से शुरू की हुई है
0: जी।
1: तो उसमें मैं उस योजना का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ कई लोग जुड़ भी गए हैं जो रिटायर हो गए
0: जी।
1: और रिटायर होने के बाद आदमी क्या करेगा, घर पे खाली है ना
0: जी।
1: तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर घर पे खाली तो खाली क्यों है, आपने जो काम किया अपने जीवन में इतना, आपने आपको एक्सपीरियंस हुआ, तजुर्बा हुआ, उसका लाभ समाज को दो
0: जी।
1: और बिना किसी वेतन के दो, आप तो घर पे खाली बैठे हो
0: जी,
1: तो हमारे साथ चल के किसी कॉलेज में कुछ अपने उद्बोधन दे दो, कुछ लोगों को ज्ञान दे दो
0: जी।
1: तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ हर पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये दो चीजें वास्तव में कर रहा हूँ।

0: भी है। जैसा आपको भी पता होगा कि पूरी दुनिया में आज इंडियन सिविक सेंस की बात हो रही है कि बहुत बुरा हमको बताया जाता है। ऐसा भी बोलते हैं विदेशों में कि इंडियंस आर डर्टी। हम लोगों के लिए बोला जाता है सिविक सेंस नहीं है हमारे भीतर, ये क्या कारण आपको लगता है सर?
1: देखिए, जब हम आत्मावलोकन करते हैं तो ये पाते हैं कि जो हम पे ये आरोप लगाए जाते हैं ये गलत नहीं है
0: जी,
1: ये सही है। आप अभी, मैं तो कभी विदेश गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे संबंधी गए हैं विदेशों के बारे में जानकारी, जो सही जानकारी थी, कि किताबों से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो विदेशों में लोग गए हैं सही रूप से उन्होंने मुझे जानकारी दी है, उसमें जो हम देखते हैं तो हम लोगों में वास्तव में सिविक सेंस नहीं है। हम अपने घर का कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं। तो हमारा जो ये राष्ट्रीय चरित्र निर्माण अभियान है उसमें हम सब ये चीजें भी सिखा रहे हैं कि भाई आप, ये देश आपका है, आप समझो सिविक सेंस में जितनी भी चीजें आती हैं, आप चाहे वो सफाई से संबंधित हो, चाहे आप, अब आप ये देखिए कि कहीं भी हमारे में, हम कहते तो हैं कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं
0: जी,
1: सर्वे संतो निरामया की बात करते हैं कि भाई हम सबकी सोच रखते हैं, लेकिन व्यवहार में क्या है? व्यवहार में अगर कहीं पर लाइन लगी हुई है किसी चीज के लिए तो सबसे पहले तो हम आगे घुसने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: तो ये जो भाव है ना, केवल अपने आत्म केंद्रित जो लोगों के भाव हैं उसी को परिवर्तन करने की जरूरत है
0: जी।
1: और ये हम इसके जो रचना स्कीम है इसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, और ये केवल हमारे प्रयास करने से नहीं होगा, ये हमारे पूरे जितने भी समझदार लोग हैं उनको ये चीज घर से शुरू होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि स्कूलों में जो हैं, जो पब्लिक स्कूल हैं खासतौर से
0: जी,
1: उनमें अधिकांश में ये भाव बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं
0: जी।
1: तो एक घटना आपको बताऊंगा कि हम लोग कार में जा रहे थे
0: जी,
1: उस समय मेरे बच्चे छोटे थे, तो एक मेरी छोटी बच्ची थी, उसने टॉफी, उसकी आयु होगी लगभग 9 वर्ष के करीब की, तो उसने टॉफी हम सब लोगों ने ली, क्लास मैंने दी सब कुछ टॉफी, तो उसने जैसे मैंने रैपर खोल के लिए तो उसने मेरे से कहा कि ये पापा ये रैपर मुझे दे दीजिए। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों मांग रही है, खैर हमने दे दिया। फिर मैंने उससे पूछा, सबके ले लिया उसने, तो उससे जब पूछा तो उसने कहा कि आप अभी खिड़की खोलोगे फेंक दोगे बाहर, अब मैं जो हूँ जब कार रुकेगी तो कहीं इसको डस्टबिन में डालूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पूछा कि तुमको किसने समझाया? उन्होंने कहा मेरे टीचर ने बताया। तो ये जो स्कूल है ना, ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा, आ रहा है परिवर्तन, आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें सुधार नहीं हो सकता, सुधार होगा
0: जी।
1: बिल्कुल
0: जी सर, आपने वाकई में बहुत अच्छी बात बताई। और राष्ट्र चरित्र निर्माण जो योजना है, जो ये मुहिम है, इसमें जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उतना ही अच्छा है, और सिविक सेंस को बेहतर बनाना है ये भी जरूरी है।

0: अब सर मैं बात करना चाहता हूँ उस दौर के बारे में जब आपने स्ट्रगल शुरुआत की और अपना, जैसे आपने बताया आपके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि आप कहीं किराए पर एक क्लिनिक खड़ा कर सकें, तो उस समय पर क्या क्या दिक्कतें आपको आई। मैं चाहता हूँ आप इसलिए भी बताएं कि जो युवा पीढ़ी हम जैसे लोग हैं, स्ट्रगल आता है ना सामने सर, लोग फोन नहीं उठाते या पैसा नहीं होता तो बड़े स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं सर आज, तो उस सबसे विपरीत परिस्थितियों में जब आप कुछ भी नहीं थे तब आपने कैसे डील किया और कैसे आपने कामयाबी की ओर पहला कदम बढ़ाया सर?
1: वासु देखो, ये तो मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ी चीज है कि अपने में विश्वास होना चाहिए। अगर व्यक्ति को अपने में विश्वास है तो सफलता आपको मिलेगी मिलेगी
0: जी।
1: और अपने में विश्वास केवल यही नहीं होना चाहिए कि मैं सफल होऊंगा, बल्कि ये भी होना चाहिए कि मैं सही रास्ते पे चलूंगा
0: जी।
1: जब आप मन में ये विश्वास करते हो तो रास्ते स्वयं निकलते हैं
0: जी।
1: जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे आरंभ में अनुमति देने से मना कर दिया था, तो मैंने लिखा, ये दृष्टांत अपने पुस्तक में लिखा है कि मेरे पिताजी बिल्कुल मेरे विरुद्ध थे कि मैं प्रैक्टिस ना करूं
0: जी।
1: जब मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि तुम मेरे से मांगोगे कैसा, मुझे दुकान लेनी है तो तुम मेरे से किराया मांगोगे, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये तो मुझे पता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अब मैंने अपना प्रयास किया, मैं अपने गुरु से मिला, मैंने उनसे कहा कि साहब मैं क्या करूं, उन्होंने मुझे बताया कि चलो तुम जो हो तुम फ्री में काम करने को तैयार हो, मैंने कहा कर लूंगा। अच्छा ठीक है, एक नर्सिंग होम के अंदर वहां के मरीजों को तुम्हें फ्री देखना पड़ेगा,
0: अच्छा
1: तुम्हें बैठने के लिए कमरा दिला दूंगा, तो रास्ता निकला ना
0: जी।
1: मैंने अच्छा अब कभी मैंने ऐसा नहीं किया, बहुत ईमानदारी से मैंने किया, मैंने 84 नर्सिंग होम में जब उन्होंने मुझे कमरा दे दिया
0: जी
1: और मैं उनके मरीजों को फ्री जाकर निःशुल्क जाकर देखता था, क्योंकि होते थे किसी दूसरे डॉक्टर के
0: जी,
1: तो अगर मेरे मन में कोई भी जरा सा भी कोई गलत भाव होता तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये करता कि वो मरीज वहां से टूट कर वो मेरे पास आ जाए, जैसे सामान्यतः हुआ करता है
0: जी सर।
1: मैंने कभी नहीं करा, मैंने कहा कि जो मेरा दायित्व है, बल्कि अगर कभी किसी ने मेरे से, क्योंकि मैं उस अस्पताल में ही चैम्बर में बैठता था और जो बाकी डॉक्टर थे वो बाहर से आते थे जिनके मरीज में देखा करता, तो कई बार वो आके मेरे से कहते कि डॉक्टर साहब हम आपको दिखाना चाहते हैं जो छुट्टी होने के बाद,
0: अच्छा
1: तो मैं मना कर देता था, मैंने कहा मैं आपको नहीं देखूंगा, वो आपका जो डॉक्टर जिसने आपका किया आपको उन्हीं के पास जाइए।
0: अच्छा
1: तो मैंने सिद्धांतों के साथ कभी लालच में आके कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं तो अपने सभी युवा साथियों को ये कहूंगा कि रास्ते निकालो, अपने में विश्वास रखो कि हम सफल होंगे, अपने ज्ञान में विश्वास रखो और इस बात में विश्वास रखो कि हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना, स्वतः रास्ते निकलते हैं। फिर जब थोड़े से मेरे पास पैसे हुआ, थोड़े से जमा हो गए, तो फिर मुझे दुकान किराए की दुकान लेने की बात आई
0: जी।
1: तो उस समय तक मेरे बारे में लोगों को ज्ञान हो गया था कि भाई ये अच्छा डॉक्टर है और ये ईमानदार डॉक्टर है, ये किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, फायदा ही करता है, इस पे जो भी दे दो पैसा वो ले लेता है, ना भी दो तो कोई बात नहीं है। ये जब मेरे पास पता चल गई तो पास ही में थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग थी, वहां गौड़ साहब की बिल्डिंग थी
0: जी,
1: तो उनके पास एक दुकान खाली हुई।
0: अच्छा
1: मैंने उनसे पूछा कि आप मैं लेना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ले लो। तो उन्होंने कहा कि भाई कितने आपको पगड़ी वगैरह की बात आई कैसे हुई, हमारे एक मित्र मिल गए, उन्होंने उसको जाके कहा, उन्होंने कहा कि ये तो बड़े अच्छा काम आप कर रहे हैं, मैं आपसे कोई पगड़ी नहीं लूंगा।
0: अच्छा
1: हाँ आप बस किराया दे देना।
0: ठीक
1: इतना मैं कमा लेता था कि महीने का किराया निकाल दिया उस समय तक। तो मैंने देखा ना, आप अगर अच्छे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे सतत प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता आपको अवश्य

0: समाज इतना बुरा नहीं है कि आपको आगे बढ़ना नहीं देगा
1: जी।
0: हाँ, जैसे कि आप में ये विश्वास होना चाहिए, आपको जैसे पहाड़ से आप देखते हैं, जब पहाड़ में एक पानी नदी जब आप चलती है, तो मैंने अपनी जो मैं पुस्तक लिख रहा हूँ उसका नाम भी मैंने जीवन तरंगिनी लिखा है
1: जी,
0: है ना। तो तरंगिनी जैसे एक नदी जब पहाड़ से चलती है तो उसको कितने बड़े बड़े अवरोध सामने आते हैं ना
1: जी,
0: कि पत्थर बड़े बड़े पत्थर उसको रोकते हैं
1: जी,
0: है ना। रुकती है क्या? नहीं रुक पाती, वो आती है, उनसे टकराती है और उनको बिना नुकसान पहुंचाए उनके दाहिने बाहिने से वो नदी निकल जाती है। और ऐसा भी नहीं कि सीधी जाती हो, कहीं उसको मुड़ना पड़ता है, कहीं उसको झुकना पड़ता है, कहीं उसको बढ़ना पड़ता है, और वो इस तरीके से करके और अपने अंतिम लक्ष्य सागर तक पहुंच जाती है। तो हमें उस नदी की तरह होना चाहिए कि सतत हमें प्रयासरत रहना है, अवरोध आएंगे जीवन में, उनका दाया बाया करके रस्ते निकलेंगे, लेकिन अपने में विश्वास कर होगा तभी होगा ये।

0: कई बार बहुत बड़े उतार चढ़ाव भी आपके जीवन में आए कामयाबी मिलने के बाद, उसके बाद भी लगातार आते ही रहे। तो जब आपके जीवन को मैं देखता हूँ तो आप जीवन भर संघर्ष ही कर रहे हैं, लड़ ही रहे हैं, मतलब खुद से, कभी समाज से, जो भी परेशानी आई। वो जो मैनेजमेंट होता है सर कि जब विपत्तियों का टाइम होता है, इंसान को टाइम भी मैनेज करना है, मनी भी मैनेज करना है, परिवार भी देखना है, ये स्किल कैसे कोई भी हम जैसे लोग अपने भीतर जागृत कर सकते हैं?
1: ये भी तुम्हारे कृष्णा, तुमने बिल्कुल सही बात की है कि मेरे जीवन में सामान्य ही नहीं बहुत बड़े बड़े विकराल समस्याएं भी आई
0: जी।
1: और वो मुख्य रूप से समस्या इसलिए थी कि मैं अपने सिद्धांतों से हट नहीं सकता था, हटना चाहता नहीं था, क्योंकि मैंने संकल्प लिया हुआ था कि मैं अपने सिद्धांतों का पालन करूंगा
0: जी।
1: सबसे बड़ी समस्या तो ये कि वही देश के अंदर हमारे भ्रष्टाचार, जातिवाद, ये सब जगह फैला हुआ है, और वो सब मेरे सामने, मेरे आड़े हाथों मुझे लेना पड़ा उनको मेरे सामने, लेकिन मैं झुका नहीं। मुझे ये विश्वास था, सत्यमेव जयते पे विश्वास था। और देखिए, वैसे तो हमारी बौद्ध मान्यता में लोग कहते हैं कि सर तथागत भगवान बुद्ध जो थे वो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं, ये भी भ्रम है भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं होता, उन्होंने नॉन कमिटल थे, उन्होंने कहा ढूंढ लो भाई, खोज का विषय है, जब मिल जाए तो बता देना, जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं भगवान का को मानने के लिए इसे तैयार नहीं हूँ कि आप कहें कि भगवान ने तो ये जातियां बना दी, ये वर्ण बना दिए, तो मैं इसलिए नहीं मानूंगा भगवान को। लेकिन अगर भगवान नहीं है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। तो मेरा कहना यह है कि भगवान हो ना हो, लेकिन भगवान की हमको आवश्यकता है। और हमको आवश्यकता क्यों है कि जब हमें ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल सही हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा हमारे सामने अवरोध पैदा कर देता है, इतना विकराल अवरोध पैदा कर देता है कि जो हम कई बार लगता है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, हम टूट जाएंगे। तो अगर हम भगवान की जरूरत यहाँ पर पड़ती है कि अगर हम ईश्वर को मानते हैं तो हमें बहुत बड़ा संबल मिलता है
0: जी,
1: कि ये हम अगर कुछ भी सही काम कर रहे हैं तो कोई शक्ति है जो हमें बचाएगी, वो शक्ति किसकी है, वो ईश्वर की शक्ति है। तो ईश्वर हो या ना हो, लेकिन ईश्वर की हमको आवश्यकता है
0: जी।
1: तो मैंने जब भी मेरे सामने ऐसे विकराल समस्याएं आई हैं, मैंने अपना सिद्धांत कभी सेक्रीफाइस नहीं किया, मैं सही रास्ते पे चलता रहा और मन में ये विश्वास था कि सत्य में जाते हैं, सत्य की विजय होगी ही होगी। परसीवरेंस मैंने रखी, लगातार मैं लगा रहा और मुझे ये विश्वास था कि ईश्वर मेरी मदद करेंगे। और जैसे मैंने कहा ना, ईश्वर है नहीं, इट इज ए मैटर, लेकिन मुझे इतना बड़ा उसमें आत्मबल मिला कि मैंने उन समस्याओं का सामना किया और हर समस्या के बाद मैं विजयी होकर निकला और अधिक मजबूत होकर निकला।

0: और आज आप हमारे सामने बैठे हैं सर, और मैं इस बात की गवाही देना चाहता हूं कि न सिर्फ मेरे जैसे लोगों का, न जाने अपने असंख्य लोगों का जीवन बदला है। अस्पताल में हजारों लोग अपना रोज जीवन बदल कर जाते हैं। जब वो सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटते हैं वहां वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और बड़े अस्पताल जो महंगे होते हैं वहां वो जा नहीं सकते, तो उनको एकमात्र अंधेरे में रोशनी का दिया नजर आता है सुभारती अस्पताल, और पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाते हैं। मैंने खुद देखा है सर। हालांकि मैंने आपसे 2-5 मिनट मांगे थे पर बहुत समय बीत गया, क्योंकि आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं कि मेरा मन और बात करने के लिए करता है, तो मैं थोड़ा सा यहां पर लालची हो जाता हूं। लेकिन चलते चलते मैं चाहता हूं सर, हमारे श्रोताओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए खास तौर से, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्पेशली दो चीजें सबसे अहम है सर, एक तो स्ट्रेस, हर चीज का स्ट्रेस है सर युवा पीढ़ी को, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, पैसे ना कमाने का स्ट्रेस है, और सोशल मीडिया ने भी एक स्ट्रेस दिया है। तो मैं चाहता हूँ इस परिस्थिति से हम लोग कैसे निकले, इसके बारे में कुछ बताएं सर।
1: देखो, बहुत आपने जो प्रश्न पूछे ये बहुत ही ऐसे प्रश्न है जिनके बहुत ही सार्थक हैं
0: जी,
1: क्योंकि अभी बहुत सारे युवा जो हैं वो हम देखते हैं कि कोई किसी भी कारण से अपने मिशन में फेल हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का मिशन हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत का मिशन हो, कुछ भी हो
0: जी,
1: और वो डिप्रेशन में चला जाता है, अब मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है, और बहुत सारे हमारे जो युवा हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं
0: जी।
1: तो मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने में विश्वास रखिए कि आप जीतेंगे। हाँ, हर समस्या के आगे आप अगर उससे दृढ़ता के साथ उसका सामना करेंगे तो उसके बाद जीत आपकी है। दूसरी बात, आप ध्यान रखिए कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है ना। आप अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं 2 दिन के अंदर पैसे बन जाए, अमीर हो जाऊं, तो ये ऐसा तो सोचना भी चाहिए। जो भी चीज

0: एक और संदेश में जरूर ये देना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता तो अवश्य चाहें
1: जी,
0: उसके लिए प्रयासरत भी हों
1: जी,
0: लेकिन देश को ना भूलें, देश को साथ में रखें। आपके मन में ही होना चाहिए कि मैं कोई काम ऐसा ना करूं जिससे मेरे देश को नुकसान हो, तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम का भाव आपके मन में होना चाहिए, अवश्य ही आप सफल होंगे
1: जी। सर चलते चलते सुभारती परिवार को लेकर आपका क्या विजन है, आवाम भी ये जानना चाहेगी, क्योंकि गांव में कहीं दूर कोई व्यक्ति के जब डाढ़ में दर्द होता है तो सुभारती डेंटल आने की बात करता है, क्योंकि सस्ता इलाज और अच्छा इलाज यही हो सकता है, ऐसी सुभारती अस्पताल है हमारा। तो इन सब को लेकर आपका क्या विजन है, आपकी क्या इच्छा है, जरा बताएं।
0: मेरा सुभारती अस्पताल और सुभारती शिक्षण संस्थाओं के संबंध में मेरा विजन और मेरा मिशन यही है कि समाज के जो कम से कमजोर से कमजोर वर्ग है उसको ये सुविधा मिलनी चाहिए, पैसा उसके बीच में आड़े नहीं आएगा, ये मेरा वादा है
1: जी।
0: चाहे उस किसी भी तरह का इलाज हो, हाँ, उस पैसे में उसको कभी कोई समस्या नहीं होगी, उस पे है नहीं है कितना है ये सब बात की चीजें हैं, लेकिन उसको निराशा नहीं होगी, उसका इलाज यहाँ पर होगा। ये मैंने न केवल मैंने इसका पालन किया, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं जो कि अब आगे इसको संभाल रहे हैं और संभालेंगे, वो इस बात में मेरी तरह से पूरी तरह से 100% मेरे से सहमत हैं और मेरे साथ उसको लेके चल रहे हैं
1: जी।
0: इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि सब लोग पढ़े, सब लोग जाए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, फीस देने के नहीं है, हमारे पास योजनाएं हैं, हमारे पास इस तरह की योजना है कि हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे या कम है तो कम ले लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपको हमारे साथ हमारे मिशन में जुड़कर उसमें कार्य करना है समाज के लिए। तो इस तरह की योजनाएं हैं जिससे कि कोई भी आदमी को ये भी महसूस ना हो कि भाई मेरे को तो पैसे नहीं दे तो मुझे मजबूर होके किसी के रहम करम पे पढ़ना पड़ रहा है। हम तो ऑफर दे रहे हैं ना कि भाई आपको हम पूरी रियायत दे रहे हैं जितनी आप चाहते हैं, लेकिन बस ये वादा है कि उसके बाद हमारे साथ समाज को बनाने में, समाज के निर्माण में तुम हमारा साथ देना, तो कितना सुंदर है। हम लोग जॉब पूरी कर लेते हैं उसके बाद नौकरी भी अपने देते हैं, उसको सैलरी भी हम देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वादा है, सुभारती का मिशन भी है और सुभारती का वादा भी है कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी होगा उसको चिकित्सा और शिक्षा दोनों सुविधाएं उसको अवश्य मिलेंगी। आप आए और आप हमारे ग्रुप में अगर कहीं भी कोई समस्या होती है तो हमारे विभिन्न प्रतिनिधि हैं, और मैं तो कहता हूं कि ये आजाद हिंद रेडियो भी आपका है, आपसे ही मिल लें
1: जी,
0: और आप हमारे तक पहुंचा दें उनकी बातें,
1: तो
0: हम उनको कभी निराश नहीं होने देंगे। ये मेरा संदेश है और यही मेरा आपके लिए वादा है, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए।
1: थैंक यू सो मच सर। ये आपके साथ जो पॉडकास्ट हुआ, जो बैठकर वार्तालाप हुआ, ये मेरे जीवन का रूपांतरित कर देने वाला समय है सर, और आप मेरे हीरो हैं, क्योंकि जीवन के कई खतरनाक और दर्द भरे मोड़ पर आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। बात करेंगे अभी नेशनल पॉजिटिव थिंकिंग डे के बारे में। नेशनल पॉजिटिव थिंकिंग डे को मनाने की शुरुआत डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पिल के सम्मान में की गई थी। डॉक्टर पिल एक अमेरिकी पादरी और लेखक थे जिन्हें सकारात्मक सोच के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग 1952 ने दुनिया भर में लाखों लोगों को सकारात्मक सोच की शक्ति से परिचित कराया। इस किताब ने बताया कि कैसे हमारा दिमाग और विचार हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं। डॉक्टर पिल के विचारों ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वो अपनी सोच को बदल कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, और बात भी बिल्कुल सही है। अगर आप अपनी सोच को बदल लें, सोच को पॉजिटिव कर लें, सोच को अच्छा कर लें, तो आप जरूर कुछ नया कर सकते हैं, जरूर कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनके काम और उनके संदेश को सम्मान देने के लिए हर साल 13 सितंबर को, जो कि उनकी जन्मतिथि भी है, नेशनल पॉजिटिव थिंकिंग डे के रूप में चुना गया। आगे इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे, जानेंगे। आपको जाना कहीं भी नहीं है, जुड़े रहिए, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

स्क्रीन से नजरें हटाइए, अपनों से नजरें मिलाइए। दिन में कम से कम एक घंटा अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और असली बातें करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक असली सुकून के लिए। कनेक्ट विद पीपल नॉट वाईफाई। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

0: मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज और आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। नेशनल पॉजिटिव थिंकिंग डे के बारे में हम बात कर रहे थे, आगे बात बढ़ाते हैं और समझाते हैं आपको कि ये दिन कैसे मनाया जा सकता है अगर अभी तक आपने नहीं मनाया तो। देखिए, अपनी जिंदगी में जिन चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं और इसी के साथ ही साथ खुद से सकारात्मक बातें कह सकते हैं, जैसे कि आज मैंने एक अच्छा दिन बिताया, मैं अगला दिन भी अच्छा दिन बिताऊंगा और हर चुनौती का सामना करूंगा या करूंगी। इसी के साथ ही साथ कोई अच्छा सा आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, प्रेरणादायक पॉडकास्ट, और वहीं पर कोई अच्छी सी किताब आप जरूर पढ़ सकते हैं एंड अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी एक सकारात्मक संदेश भेज सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं एंड यही है नेशनल पॉजिटिव थिंकिंग डे। वैसे पॉजिटिव तो आपको हर दिन हर बात में हर सिचुएशन में रहना ही चाहिए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: हाँ, रब वर्गा

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: हॉस्पिटल हो या स्कूल या फिर ट्रैफिक जैम, बेवजह हॉर्न बजाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि शोर से सुकून नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी बढ़ती है। शांति बनाए रखें, शहर को बहरा ना बनाएं। नो हॉन्किंग प्लीज। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और चलिए अभी हम करते हैं हमारी आज की अच्छी वाली बात, जो ये कहती है, पुरानी बातों को भूल जाने से खुशियां आपको नहीं भूलती। सीधा और सिंपल सा मतलब है, पुरानी बातें जो होती हैं, हमें किसी ने कुछ कह दिया होता है या हमने किसी को कुछ कह दिया होता है, तो हम उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं, या हम किसी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो उसी बातों में हम उलझे रहते हैं कि काश ऐसे तैयारी हो जाती तो हम ये कर लेते या कुछ और कर लेते। हम वही बातें सोचते रहते हैं और इन्हीं बातों को सोचते हुए इतने ज्यादा उदास होने लगते हैं कि खुशियां धीरे धीरे हमसे दूर होने लगती हैं। वहीं पर हम पुरानी बातों को भूल जाएं और आगे बढ़ने की सोचें, कुछ नया करने की सोचें, तो जो खुशियां हैं वो आपको नहीं भूलेंगी। सो इसलिए आगे बढ़ने की सोचिए, बीते कल को छोड़ दीजिए, ज्यादा वक्त उसके बारे में मत सोचिए और बस कुछ अच्छा करने का सोचिए। हमेशा बेस्ट रहिए और कभी भी कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे किसी का दिल दुखे। बाकी ये हुई हमारी अच्छी वाली बात। अभी के लिए आपको जाना कहीं नहीं है, सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

अगर आपके पास एक मोबाइल है तो ये आपके दिमाग को किसी न किसी चीज से बांध कर रखता है, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं सोच पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, और आपकी जो टेंशन है वो थोड़ी सी बढ़ती रहती है। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, एक सर्वे ये कहता है। आपके इस पर क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि मोबाइल फोन ज्यादा यूज करना सही है या गलत है? जो भी आपको लगता है आप मुझे बताइए, और एक कारण दीजिएगा, बट दीजिएगा जरूर। इसी बहाने थोड़ी सी आपसे बातें भी हो जाएंगी, जरूरी भी है बात करना मोबाइल फोन के इतने बढ़ते यूज पर। चलिए भाई, रिस्पांस कीजिए इस बात पर, और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

कमाई कितनी भी हो, बचत जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त का सहारा बनती है, इसीलिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा आज ही बचाना शुरू करें। आज ही इन्वेस्ट करें, कल को सुरक्षित करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। कुछ वक्त पहले अभी बातें चल रही थी मोबाइल फोन के यूज को लेकर। मैं आपको बता रहा था कि एक सर्वे जो है वो ये कहता है कि आपकी लाइफ की 50% तक की समस्याएं इस मोबाइल फोन की वजह से हैं। अब इस बात पर हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्स करते हैं रोशन, जो कहते हैं कि सर 50% तक का तो पता नहीं, लेकिन हाँ समस्या तो है। कहीं पर भी मैं बैठता हूँ, किसी के पास भी बैठता हूँ, तो बस कुछ वक्त बातें होती हैं, उसके बाद हाथ में मोबाइल आ जाता है और उसमें हम बिजी हो जाते हैं। बात जो हो रही होती है उस पर फोकस ही नहीं होता। और कुछ लोग मुझसे इसकी शिकायत करते हैं कि क्या यार मोबाइल में ही लगा रहता है, कभी बैठकर फुर्सत में बात भी कर लिया कर। तो ये उन्होंने मुझे बताया। इसके बाद आगे मुझे मैसेज करते हैं शेखर, जो लिखते हैं कि सर मैं तो मानता हूं कि 50% नहीं 100% तक भी अगर समस्याएं कही जाएं कि मोबाइल फोन से हैं तो गलत नहीं होगा। तो हमने कहा भाई कैसे, आप बताइए। तो कहते हैं कि सर एक वक्त ये था कि जब मैं स्मार्टफोन यूज नहीं करता था, उस वक्त छोटा मोबाइल फोन मेरे पास होता था, तो बस कॉल आती थी तो मैं उसे बस पिक करता था, बात होती थी और कॉल कट हो जाती थी। लेकिन जब स्मार्टफोन खरीदा तो उसमें सोशल हैंडल्स चलाने लगा, व्हाट्सएप चलाने लगा, गेम्स खेलने लगा और बस इनमें ही बिजी रहने लगा। अब कहने लगे कि मैंने एक रास्ता निकाला है कि इन दिनों मैं क्या करता हूँ, अपना स्मार्टफोन घर पर रख कर जाता हूँ और अपने पास अपना छोटा वाला मोबाइल फोन रखता हूँ, ताकि किसी की कॉल आए तो मैं रिसीव कर सकूँ और बात कर सकूँ और अपने काम की जगह पे सिर्फ काम कर सकूँ, मोबाइल में बिजी ना रहूँ। तो ये तो बड़ा आप अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके से तो आप अपने आप को थोड़ा सा बचा रहे हैं कि मोबाइल फोन ज्यादा यूज ना हो। चलिए थैंक यू आप सभी का, आपने अपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। बाकी मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए मोबाइल फोन का यूज ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा है, कुछ अच्छे कामों के लिए भी इसका यूज होता है। कभी आप कहीं जा रहे होते हैं बाहर और आपको मैप से कहीं पहुंचना होता है तो आप मोबाइल फोन का सहारा लेकर ही पहुंचते हैं, है ना। कुछ नॉलेज जुटानी होती है तो आप यहीं पर सर्च करके जुटा सकते हैं कहीं भी कभी भी। लेकिन आप गेम्स में लगे हुए हैं, सोशल हैंडल्स चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं और 24/7 चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है। काम के समय काम कीजिए, बाकी जितना हो सके कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा बचें मोबाइल फोन से और अपने काम को समय दें, अपने परिवार को समय दें। सुनते रहिए ऐसे ही आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आपके अपने बिंदास आर जे पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। बच्चों पर प्रेशर नहीं, उनका भरोसा बनिए। उन्हें खेलने दीजिए, उन्हें खिलने दीजिए। स्ट्रेस फ्री बचपन, बेहतर भविष्य। तो बस सही समय पर सही तरीके से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज भाई। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM की अगर हम बात करें अपने, तो हमारा जो ये रेडियो है आप मेरठ में भी सुनते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से और ऐप के माध्यम से, तो इसे आप मेरठ में भी सुनते हैं और मेरठ के बाहर भी सुनते हैं। अभी मेरे पास एक कॉल आई थी, आप कॉल जिनकी थी उन्होंने क्या कहा वो आपको मैं सुनवाता हूँ। गुजरात से ये कॉल मेरे पास आया था, गुजराती वो बोल रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि आप हिंदी बोल लेते हैं तो कह रहे थे कि मैं हिंदी समझ लेता हूँ लेकिन बोल कम पाता हूँ। अब बताता हूँ ये क्या कह रहे थे। ये कह रहे थे कि मेरा नाम जसमत भाई बच्चू भाई है और नानापालिया गांव से मैं सुन रहा हूँ गुजरात से, और तेरे नाम मूवी का एक गीत सुनना चाहता हूँ। तो इनके गीत की फरमाइश को तो हम जरूर पूरा करने वाले हैं। बाकी आप हमें ऐप के माध्यम से कहां पर सुनते हैं हमें जरूर बताया कीजिए जैसे इन्होंने बताया। बाकी जसमत भाई आपकी रिक्वेस्ट पर प्ले कर रहा हूँ मैं आपकी पसंद का गीत तेरे नाम मूवी से।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

0: तुम्हें जो भी कहना है कह दो, इतना क्यों डरते हो? तुम हम पे ज्यादा मरते थे या उन पे मरते हो? मैं अब तो चला गया हूँ, अब तो जवाब दो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो?
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रही हैं मुझे यानी कि आपके अपने बिंदास आरशे पंकज को। और भाई देखिए, हमारे शोज में तो यहाँ पर आपसे हमारी ढेर सारी बातें होती रहती हैं। हमारे पास जितना भी समय होता है उस समय में हम कोशिश करते हैं आपसे ज्यादा से ज्यादा बात करने की, आपकी फरमाइशों को पूरा करने की, या आपकी कोई बात जो आप हमें बताते हैं उन्हें अपने शो का हिस्सा बनाने की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शो हमारा पूरा जाता है और आपकी बात अधूरी रह जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, शो से पहले या शो के बाद में भी आप हमसे बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर जुड़कर। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको मिलते हैं इंस्टाग्राम पर और हम आपको मिलते हैं फेसबुक यानी कि मेटा पर भी। तो वहां पर अभी तक आप कनेक्ट नहीं है तो आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप सोशल हैंडल्स यूज करते हैं। तो सोशल हैंडल्स से जब आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका और हमारा कनेक्शन जो है वो बना रहेगा शो के बाद भी और शो के पहले भी। तो अभी तक कनेक्ट नहीं है सो कनेक्ट हो जाइए और बातें कीजिए, कुछ हमें बताइए, कुछ हमें सजेस्ट कीजिए हमारे शो से जुड़ा हुआ। बाकी सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और अभी समय है एक क्विज का। आपसे एक क्विज मैं करने वाला हूं जो होगा काफी ज्यादा आसान। आपको उसका जवाब भी पता होगा जितना मेरी आपसे बातें होती है, जितना मैं आपको जानता हूं उसके मुताबिक। सो क्विज मैं करूं उससे पहले आपको कंडीशन बता देता हूं। इस क्विज का जवाब आप मुझे देंगे हमारे सोशल हैंडल्स पर, ये कंडीशन का हिस्सा है। साथ ही साथ कंडीशन में और बात करूं तो आपको जवाब सबसे पहले देना होगा और आपका जवाब भी करेक्ट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरा आपने की तो आपको मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट। अब क्विज आप तक पहुंचाता हूं। क्विज ये है, आपको मुझे बताना है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। इतना सा बस आपको मुझे बताना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं, ठीक है। इतना बस आपको मुझे बताना है। कंडीशन आपको पता है, दोबारा बता देता हूं। जवाब आप मुझे देंगे हमारे सोशल हैंडल्स पर, आपका जवाब हमारे पास सबसे पहले आना चाहिए और जवाब आपका करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका जवाब मान्य होगा। और कंडीशन को पूरा करते हुए आपने जवाब दिया तो आपको मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट हमारे रेडियो की ओर से। तो बिना देर किए चलिए जवाब अपना भेजना शुरू कीजिए। मैं चेक करता हूं हमारे सोशल हैंडल्स, आपके जवाब का मैं वेट करूंगा अपकमिंग गाने के साथ।
1: एक्सक्लूसिव ऑन mgana.in।

सुनसान सड़क, अकेलापन और एक अजनबी जो मदद मांग रहा है। आपका दिल पिघल जाता है, आप मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, पर क्या आप जानते हैं ये एक जाल हो सकता है। आजकल सुनसान रास्तों पर लूटपाट और अपराध के लिए अजनबी मदद का नाटक करते हैं। इंसानियत जरूरी है, पर आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। सुनसान जगह पर गाड़ी कभी ना रोकें, अपने शीशे और दरवाजे बंद रखें। अगर कोई मुसीबत में लगे तो सीधे पुलिस को फोन करें। सचेत रहें, सुरक्षित रहें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना पिंदास आरजे पंकज और एकदम लाइव आपसे मेरी बातें हो रही हैं। कुछ वक्त पहले आपसे अभी एक क्विज मैंने किया था, क्विज काफी ज्यादा आसान था। आपसे मैंने पूछा था इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, इतना सा बस आपको मुझे बताना था। कंडीशन ये थी आपको जवाब हमारे सोशल हैंडल्स पर देना था, वो भी सबसे पहले और करेक्ट। अब इस कंडीशन को पूरा करते हुए जिन्होंने जवाब दिया है और सरप्राइज गिफ्ट जीता है ये हैं अनिकेत। इन्होंने हमें बताया है कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में स्थित है। तो अनिकेत आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने जवाब हमें सबसे पहले भेजा है, इसलिए आपको मिल रहा है हमारे रेडियो की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं और अपना सरप्राइज गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। बाकी सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: रंग रूप या वजन, इनको लेकर किसी का मजाक ना उड़ाएं। हर इंसान अपने आप में खास है। खूबसूरती दिल में होती है, दिखावे में नहीं। सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता नहीं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: शादी हो या पार्टी, उतना ही लें थाली में कि फेंका ना जाए नाली में। आपकी फेंकी हुई एक रोटी किसी भूखे का पेट भर सकती है। खाना बचाइए और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचने दीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज भाई। अपने शोज में हम यहां पर आपसे बातें करते रहते हैं और बातें जब हम करते हैं यहां पर तो शो के दरमियान आपकी जो फरमाइशें होती हैं वो भी हमारे पास आती हैं। तो कई बार आप मैसेजेस से अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाते हैं और कई बार आप हमें कॉल करके भी अपनी रिक्वेस्ट को बताते हैं। आपको एक तरीका और बताता हूं कि आप किस तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि होता है 9639012111 इस नंबर पर आप अपनी फरमाइश हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। छोटा सा वॉइस नोट बनाइए, उसमें बोलिए आपका नाम क्या है और आपको किस ट्रैक को सुनना है और आप कहां से सुन रहे हैं, ये भी जरूर बताइएगा उस वॉइस नोट में और बस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए। यहां पर उसे हम सुनेंगे और आपकी फरमाइश को पूरा कर देंगे। तो एक तरीका ये भी है। एंड अभी अगला ट्रैक जो हम सुनने वाले हैं ये ट्रैक है गिप्पी ग्रेवाल की वॉइस पे एंड इस ट्रैक के लिए रिक्वेस्ट हमसे की है रमनप्रीत ने। आइए सुनते हैं इस ट्रैक को।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो। रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

उंगली पर लगने वाली स्याही सिर्फ निशानी नहीं, आपकी ताकत है। शिकायत करने से अच्छा है सही चुनाव करें। हर वोट कीमती है।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं। इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920086।

0: दफ्तर की थकान और दिन भर की भागदौड़, अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का और अच्छी नॉलेजेबल बातें सुनने का, वो भी प्यारे गीतों के साथ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: A one, a two, a one, two, three, four.

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

आज ग्लास में बचाया हुआ आधा पानी कल किसी की प्यास बुझा सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और बूंद बूंद से ही जिंदगी। इसीलिए पानी बचाइए, कल बचाइए। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम। सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद शुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद शुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।